0: मिट्टी जो मान
1: पीटीआई बानी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल चेकअप बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल पीटीआई बानी के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में सब सिक्योरिटी हेड वापस अडियाला जेल आंदो वो जरियन मौजूद पीटीआई बानी के अडियाला जेल में वापस पेंजे मुंतकिल किया है। डॉक्टर की छह रुकनी टीम पीटीआई बानी जो तिबी मुआइनो कयो ए टेस्ट सैंपल वरता वाया। पीटीआई बानी की आमद का अग शिफा अस्पताल के एग्जीक्यूटिव फ्लोर के सब सील करार दई। अस्पताल के स्टाफ से मोबाइल फोन के इस्तेमाल से भी पाबंदी लागू कई वही। अस्पताल वड़ा टाला मुकरर थियल। आईजी इस्लामाबाद भी शिफा अस्पताल पहुंची सिक्योरिटी इंतजाम जो जायजो वरतो।

0: तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑफिसमैन को इन्वाइट करता हूँ कि आएं, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की जमहूरियत को हम तकमील दे सकें। एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं।
1: वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन के बीहर गालिम जी आज करे शरीफ वफाकी काबिना के इजलास के खिताब कंदे शहबाज शरीफ चयो तो ताड़ियूं बिन हथन सां वजंदियूं आहिन। अग भी चयो हाणे भी चवां तो अपोजिशन सां गालिन लाइ तैयार आहियूं। अपोजिशन मामला गालिम ज़रिए हल करे त जीअं मुआशी तरक़ी ऐं जमहूरियत खे हथी मिली सघे।

नवां सूबा ठाहिण ॾाढो ॾुखियो कम आहे। सिंध राज़ी न थींदी। सिंध खे मञाइण ॾाढो मुश्किल हूंदो। इहो मुल्की सालमियत जो बि मामिलो आहे। ज़रूरी नाहे त सियासी पार्टियुनि खे जेका एजेंडा मिले उन ते मुकमिल अमल थिए। नवनि सूबनि जो मालिक थियो। ॿियूं कुवतूं बि बणजी सघनि थियूं। जमियत उलमा इस्लाम जे सरबराह मौलाना फज़ल रहमान जूं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद जे दौरे दौरान साफ़ियुनि सां ॻाल्हियूं। मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त इहो न समझो वञे त नवां सूबा ठहण सां आवाम जी हुकुमरानी हूंदी। नवनि सूबनि जो बि क़बाइली ज़िलनि जहिड़ो हशर थी सघे थो। तजवीज़ी मुखालफ़त या हिमायत बदिरां हुन ते पार्लियामेंट में बहस थियणु घुर्जे।

ऐं सिंध जे इम्कानी विरांगे ऐं जलालपुर कैनाल खिलाफ़ प्रिया कुमारी ऐं ॿियनि ॿारनि जी वाजिब लाइ कराचीअ में वकीलनि जो सिंध हाईकोर्ट खां सीएम हाउस ताईं मार्च PIDC अॻियां धरणो हयो वियो। मसलनि जे हल लाइ गॾियल कमेटी जोड़ण वारे सूबाई वज़ीरनि जी ख़ातिरीअ ते एहतजाज ख़तम। सेव सिंध लॉयर्स फोरम कमेटीअ जे सॾ ते वकीलनि जी मार्च दौरान इंतिज़ामिया कंटेनर्स लॻाए रस्ता बंदि करे छॾिया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ऐं मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब धरणे वारे हंधि पहुची वकील अॻवाननि सां ॻाल्हियूं करे धरणे खे ख़तम करायो। नासिर हुसैन शाह चयो आहे त अॼुकल्ह वापारी बि निकिरी पिया आहिनि त 36 सूबा ठाहियो 32 सूबा ठाहियो, पर पीपल्स पार्टी जो सूबनि जे हवाले सां मौक़िफ़ वाज़े आहे। जन असेंबलियुनि ठहराउ मंज़ूर कया आहिनि, भले उते नवां सूबा ठाहिया वञनि। सिंध असेंबली सूबनि जे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर करे चुकी आहे। वकील अॻवाननि मुतालबो कयो हिकु भेरो ॿीहर सिंध जी वधानियत बाबति ठहराउ मंज़ूर कराइण समेत गुम थियल ॿारनि जी वाज़ियाबी लाइ जुडिशियल कमीशन जोड़ी वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असां जॾहिं हिकु दफ़ो

0: के पोलियो जा खतरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं? मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: अस्सलाम वालेकुम सामिन, GFM 88.8 लाड़कण जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम रोशन सुबह साण करे अवां जो पंहिंजो मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो अवां जी खिदमत में हाज़िर ऐं कबूल पवे सिक भरियो सलाम। जी समेन कहिड़ा हाल अवां जा, खुश आहियो, ठीक आहियो, चाक चङा भला। असांजी हर पल हमेशा अवां प्यारनि सजणनि लाइ इहा ई दुआ हूंदी आहे त जिथे बि हुजो खुश हुजो, कॾहिं ॾुखियो ॾींहुं ॾिसो ऐं सदाई गुलाब जे गुलनि जीअं खिलंदा मुस्करंदा रहो। आमीन। साईं मुंहिंजा, भलारो महीनो, बरकतनि वारो महीनो, रबेलवल महीनो हले पियो। अलाह साईं जा अणगणिया अहसान, मालिक साईं जा लखें कुर्ब। तव्हां ॾिसंदो त मालिक साईं असांखे ॾिसण लाइ अखियूं ॾिनियूं, ॿुधण लाइ कन ॾिना, ऐं पंहिंजो हवास खे सिंघण लाइ हिकड़ो नकु ॾिनो, मानी खाइण लाइ हथ ॾिना, घुमण लाइ पेर ॾिना। ऐं ॾिसो त असां इंसान ज़ात साह कीअं था खणूं। थोरो सोचियो साईं, हिकड़ो थोरो पंहिंजो वक़्तु कढी, कुझु मिंट, कुझु लम्हा, कुझु सेकंड हिकड़ो सोचियो त असां जेका ऑक्सीजन कीअं था सेकंड सेकंड में असां साह खणूं, सुबुह बिना पैसे मुफ़्त में, ऐं जेका पाणीअ जी तकड़ी उञ लॻे पई, असांजे इंसान जा घरड़ा जेके आहिनि सेल्स सड़नि पिया, ख़तमु थियनि पिया, ऐं लॻे थी त कीअं था पाण असां पाणी पियूं, वरी असांजो जिस्म ताज़ो तवानो। कंहिं माण्हू चयो त मां ग़रीब आहियां, कंहिं चयो त मां ग़रीब आहियां, त कंहिं ॾाहे चयोसि तूं ग़रीब न आहीं, तूं अमीर आ। त चवंदा मां ग़रीब आहियां। हुन चयोसि त मूंखे ज़रूरत आहे तुंहिंजे बुकिंग जी, तुंहिंजे हिकड़े गुर्दे जी जेका मूंखे खपंदी आहे, मां तोखे 2 करोड़ रुपया ॾींदुसि त तूं मूंखे इहो गुर्दो ॾे, त मां पंहिंजे भाउ खे या कंहिं पंहिंजे पुट खे मां हिकड़ो ॿियो गुर्दो विझाईंदुसि। त हुन चयो न, मां न ॾींदुसि। त जॾहिं तोखे 2 करोड़नि जो हिकड़ो जिस्म में गुर्दो आहे, इहा बुकी आहे, त तुंहिंजे मथां अलाह सां केॾा लखे इंसान आहिनि, त तोखे हिकु हिकु पुर्ज़ो जेको हिकु हिकु उज़वो आहे जिस्म में, फिफड़ हुजनि, दिलि हुजनि, जेरो हुजे, बुकी हुजे, बहरहाल अलाह साईं जा लखे इंसान असां पूरी निंड कयूं पिया, ऐं असांखे थकावट खां असांखे बुख लॻे पई, असां मानी खाऊं पिया, ऐं असांजे जिस्म मां घुमंदे फिरंदे कमकार कंदे पघर निकिरे पियो। पघर जी ख़ुशबू उन्हनि मज़दूरनि खां त ॾिसो, हुन जी सिंघो त साईं ख़ुशबू, त हुन जे पघर में कहिड़ी ख़ुशबू आहे जे अलाह साईं हुनखे पंहिंजो दोस्त सॾियो आहे, अलकासिब हबीबुल्लाह। अलाह ताला क़ुरान में इहो ई फरमाए त जेको पोरत आहे, जेको मेहनत कश आहे, उहो मुंहिंजो दोस्त आहे। त असां कहिड़ा थोरा रब पाक लाहींदासीं, अलाह साईं जा अणगणिया अहसान आहिनि, उन जी बाज आहे असां इंसाननि ते।

जी साईं जा अल्लाह सिंह जा अणगणिया एहसान मालिक जा किरोड़े करम जो असां अज मुसलमान आहियूं ऐं असांखे पंहिंजो महबूब असांखे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आल समझन खे पैगम्बर करे मोकिलियो ऐं असां वॾा ख़ुश नसीब आहियूं ऐं असांजो हीउ भलारो महीनो आमद जो महीनो ऐं ख़ुशियुनि जो महीनो जशन जो महीनो ऐं मां तव्हांखे हिकड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां त समुझ असां वटि आम तौर ते ॾिठो वियो आहे त घर अंदरि मर्दनि जो वर्ताव ऐं ख़ासि तौर ते घर जे वॾे जो उथण वेहण घरू सख़्तु हूंदो आहे गहरो जंहिं सबब औरतूं ऐं ॿार परेशानी में वरितल हूंदा आहिनि जेकॾहिं किथे ईअं बि हुजे त बि मर्द कावड़ में हूंदा आहिनि त पंहिंजे अंदर जी बाहि ॿारनि औरतुनि खे दड़का वग़ैरह ॾेई करे कढंदा आहिनि पर जॾहिं असां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जन जी ज़िंदगीअ ते ॾिसंदासीं त घरेलू ज़िंदगीअ ते नज़र करियूं था त पाण सगोरा सलाहु वसलम जन पंहिंजे बीबियुनि ऐं ॿाहिरनि सां तमामु मेठाज वारे अंदाज़ में पेश ईंदा हुआ ॿारनि खे खेॾाईंदा हुआ धड़का ऐं मार हर गिज़ न ॾींदा हुआ पाण सगोरनि जी नियाणी अमा बीबी फातिमा त ज़हरा जॾहिं वटन मिलण ईंदी त उथी बि हुन जो आदर भाव कंदा हुआ इहो असांजे महबूब साईं जन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जन जो इहो इख़लाक़ आहे इहो प्यार आहे इहो मोहबत आहे असां लाइ दर्स आहे असां लाइ पैगाम आहे असां हुन मां सिखूं त पंहिंजे घर में असांखे कीअं उथणो वेहणो आहे पंहिंजे घर में असांखे कीअं वर्ताव करणो आहे ऐं हर ॻाल्हि हर गिज़ उन्हनि ग़लति रवैयनि खे असां पासे रखूं ऐं असां उहो ई पैगाम असां उहो ई पंहिंजो वठूं राह जेका असांखे सोणे ॿुधाई आहे।

0: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट.

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
0: GFM

0: सिकंदर लाल शहबाज उसी हफ्ते। अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GFM network par KTN News.
6: Dubai
7: Sona Yuya Granular mitiye jo ma.
8: पीटीआई बानी जे जेल खां अस्पताल मुंतकिली वारे मामले ते मुशावरत लाए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां घरू वज़ीर मोहसिन नकवी जी मुलाकात ज़रिए मौजूद घरू वज़ीर वज़ीर-ए-आज़म के पीटीआई बानी अस्पताल मुंतकिली बाबत ब्रीफिंग डिनी वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी चयो आहे ते पीटीआई बानी जे अस्पताल मुंतकिली बाबत इंतज़ाम सभिनी जे साम्हूं आहिनि। मुंहिंजे इतलाउ मौजूद बानी पीटीआई सिहतमंद आहे ऐं खेसि अहिड़ी का बि बीमारी नाहे जंहिं सबब खेसि घणे अरसे ताईं अस्पताल में रखियो वञे।
9: आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से आवेदन को अनुरोध करता हूँ कि आए बैठ के बात करें। और जो
8: वज़ीर आज़म अपोजिशन के बीहर गालियुनि जी आछ करे छॾी वफ़ाक़ी काबीना शरीफ़ चयो त ताड़ी ॿिनि हथनि सां वॼंदी आहे। अॻु बि चयो हाण बि चवां थो त अपोजिशन सां ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहियूं। अपोजिशन मामला ॻाल्हियुनि ज़रिए हल करे त जीअं मुआशी तरक़ी ऐं जमहूरियत खे हथी मिली सघे।
5: सुन रहे थे न्यूज
10: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है 91.6।
11: अक्सर वालदेन दुआ त असां बार बार पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस जी। इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका ॾींदासीं हुन में बिगेस्ट वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे
12: हक़ सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मैं नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
4: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
5: GFM 91.6।

अजी समय ने प्रोग्राम रोशन सुबह मामूद पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तावा जो मेजबान ने मतला जुड़े जो सभी जहा प्रोग्राम रोशन सुबह में असो सब खास कर उन भाईर लाए जी अखियन का नाबी उन मुझे ख्याल आया है तो वह कड़ी शे है जी उन नाबीन भी दिसी सकन था जी अखियन का महरूम आन उ भी उन दिस कड़ी शे है तवा असादे उन सवाल उन गुजारत जो सही जवाब असादे मोबाइल ते मैसेज में भी तवा असादे मोकले सकोता फेसबुक ते भी मोकले सकोता असाजे मोबाइल नंबर ते भी कॉल करे तवा असाके नोट करे सकोता असा नंबर है 0332-13-22-88। समझा असा जो पाकिस्तान अल्लाह साईं जे नेमतन सा भरियो पियो आ असाजे प्यारे मिठड़े मुल्क पाकिस्तान में दुनिया की हर चीज हर शे मौजूद है जेके बेन मुल्क में हथरादू शयू ठाई वन थी पर असाजे मुल्क में उहे शयू ओरिजिनल आहिनि जी तव्हां ॾिसो त ॿियनि मुल्कनि में हिकड़ा वॾा पंहिंजो जबल ठाहे करे उन ते आबशहर ठाहिया वेंदा आहिनि जे पाणी उन तां किरे ऐं हुन खे ख़ूबसूरत नज़ारा ठाहिया वेंदा आहिनि पर असांजे मुल्क में कुदरती उहे आबशार उहे जबल ऐं हिकड़नि जबलनि ते पंहिंजो सरसब्ज़ उहे वण ॿूटा मौजूद हूंदा आहिनि ऐं उहे असांजा घुमण वटां ॾिसण वटां हूंदा आहिनि ऐं असांजे मुल्क में जेके मैदनी शयूं आहिनि त सिंध में या पूरे पाकिस्तान में तेल आहे गैस आहे कोयलो आहे जबल आहिनि चश्मा आहिनि आबशार आहिनि ऐं सिंध जा कुझु अहिड़ा मुल्क आहिनि जिते जंहिं कंहिं मुल्क में ट्रेन कोन्हे यानी रेल न हूंदी आहे पर असांजे मुल्क में अलहमदल्ला ट्रेन जा काफ़ी जेको आहे सो इलाइक़ा जिते ट्रेन गुज़र थिए थो सफ़र थिए थो हुन में ऐं ॾिसो त असांजा पंहिंजो पाकिस्तान में अहिड़ा मेवा बि आहिनि जेके मुंद वारा मेवा बि आहिनि त अणमुंदायता मेवा बि आहिनि जेको अलाह साईं असांखे खाराए पियो ऐं तमामु घणियूं शयूं असांजे मुल्क में ऐं असांजे मुल्क में कपिड़ो ठहे थो ऐं असांजे मुल्क में फसल जंहिंमें सारियूं यानी चांवर पंहिंजो पैदा थिए थो कणक पंहिंजी पैदा थिए थी कपह पंहिंजी पैदा थिए थी तमामु घणा फसल ऐं पंहिंजो मेवा सब्जियूं हर क़िस्म जी शयूं असां वटि मौजूदु आहिनि ऐं ॿाहिरनि मुल्कनि सां जेको असांजो वण जो वापारु थिए पियो ऐं असां जूं शयूं ॿाहिरि वञनि पियूं एक्सपोर्ट थियनि थियूं ऐं ॿाहिरियूं शयूं असां वटि अचनि थियूं त इहे अहिड़ियूं शयूं बि ॿियनि खां मुल्कनि खां घुराई बि वञनि थियूं पर काफ़ी असांजे मुल्क जूं शयूं असांजे मुल्क जी पैदावार ॿाहिरनि मुल्कनि वञे पई त इहे असांजे पाकिस्तान में दुनिया जी हर शइ मौजूदु आहे जेका ॿियनि मुल्कनि में न बि हूंदी आहे पर असांजे मुल्क में बिल्कुलु मौजूदु ई असांजो प्यारो मुल्क पाकिस्तान आहे असांजो मिठड़ो मुल्क पाकिस्तान आहे छो त इन करे इहो यादगीरो अची वियो त 14 अगस्त त असां मल्हाए चुका आहियूं पर महीनो अगस्त हले पियो पर दिलि खे जेको आहे सो जी 89 जेका आहे उहा दिलि में महसूसु थिए पई ऐं महसूसु कयूं पिया त अञा असांजे 14 अगस्त जे हवाले सां अगस्त महीनो हले पियो पर दिलि चयो त कुझु तव्हांखे इहा मालूमात पहुचायां ऐं वरी हिकिड़ो ख़ूबसूरत नगमो अव्हां जे नाम पिया कयूं।

0: It's 10:30 a.m.
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
0: GFM 91.6

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे. मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे. मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस. बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी. हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे. वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि.
3: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़.
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो.

जी असमिन प्रोग्राम रोशन सुबह बुध पाया जी एफ एम एटी एट जे नेटवर्क तमाम जो मेजबान ने मतला जुड़े जो अवज की खिदमत में हाजिर हाजिर हा जी असमिन असो जो अज जो सवाल हो असाजे भैरन लाय खास कर अज उन भैरन के याद कयासी जी असा की हमेशा याद कदा आन पर असा उन मोहब्बतों जो असो प्यार उन दिल में आए असा लाइ त असा ही अजोको जो प्रोग्राम अस जोड़ियोसी असो नाबीना भैरन लाय हो बुधाई हलां तो जी दोस्त नाबीना भाई जी नजर अखियन की नजर का महरूम आन उन मुझे सवाल हो असाजा जी दोस्त नाबीन है वह कड़ी शय है जी डी सकनता हमेशा हर शे तो मू पा जो अखियन वो आसे तो असो नाबीन दोस्त उन शे न पे ऐसे पर वह कड़ी शय है जैसे अस नाबीन भाई भी ऐसी सकता तो साई मुझा काफी टाइम थी चुको प्रोग्राम जो है सो दह लगी छहतली मिनट थे आखिरी लम्हा प्रोग्राम जहा साई मुझा तवाजा सवाल भी असा तई जवाब भी असा तई पहुंची चुका है अवजा नाला भी जरूर खणंदी तो असा यो बुझाइंदी ती दुनिया एकड़ो वण आसी उन मेवा आयो असम जी अ खाम ए कच्चा से दुनिया के मजबूत हथ विझी चिमड़ल रहन था पर जी रोशन दिल शख्स आन से दुनिया से ताल्लुक टोड़ में वेरम ही को कन साई मुझा जैके हकानी मोहब्बत में ठाज नसीब थे थी तंखे दुनिया की मुर्क एक लज्जत फिक्की बेसवाद पई लगंदी आहे उहे कडहिं बि दुनिया के कंहिं बि फंद में जीवन में ना फासंदा त कोशिश कयो त असां मेवा कचा हुजऊं या पका हुजऊं पंहिंजे इंसाननि सां पंहिंजे दोस्तनि सां प्यार कयूं पंहिंजे वतन पंहिंजे मुल्क पाकिस्तान सां प्यार कयूं कंहिंसां ॿियाई न कयूं त वधीक बहितर आहे ही कलाम ॿुधूं पिया पोइ अव्हां जा नाला अव्हां ताईं सवाल जो सही जवाब बि पहुचाईंदासीं।

जा प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां ताईं अवां जा नाला पहुचाईंदासीं। साईं जा अवां ताईं नाला बि पहुचाईंदासीं, सवाल जो सही जवाब बि अवां ताईं पहुचाईंदासीं। असांजे जेको सवाल जो सही जवाब आहे त उहो ख़्वाबु आहे जेका जी आसमिन त असांजो नाबीन दोस्तनि खां असांजो सवाल ख़ासि करे हुयो जो असां प्रोग्राम में असां हुनखे वधीक असां इन जे करे त हू ऐं शौक़ सां ॿुधंदा आहिनि ऐं असां कंदा आहिनि शामिल कुझु दोस्त आहिनि त उहो ख़्वाबु आहे सवाल जेको सही असांजा नाबीन आहिनि जेके ॼाए ॼम खां

जी वड़ी मेहरबानी। मसूद जमाली सखर खां भाउ जो जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो। दादू खां जाहिद जतोई फकीर मोहम्मद जलालाणी खे पंहिंजो सवाल ई जवाब ई कोन पियो अचे, गुलाम सेन जलालाणी ॻोठ खां। असांजी अदी भेण फोन कई, ॾुख बि थियो अफ़सोस बि थियो। भेण इहो ॿुधायो, सीमा असांजी कटबर ऐं अदी रुखसाना कटबर, ज़ोहेब ऐं बिलावल ब भाइर ऐं ब भेनर बिलाइंड आहिनि अलाहाबाद मोहले लाड़काणे खां। उन्हनि सवाल जो त सही जवाब ॾिनो, पर अफ़सोस जो ब भाइर ऐं ब भाई भेनर बिलाईंदा आहिनि। मां हुनजो शुक्रिया अदा थो कयां जिन असांजे प्रोग्राम में अॻिते कयो। वरी मां हुनजा नाला खणंदुसि, अदी सीमा बिलाईंदा बिलाईंदा आहे ऐं बिलावल कटबर बिलाईंदा आहिनि, ब भाइर ब भेनर। ऐं असांजो फरमान अली अबड़ो ऐं घोटकी ज़िले खां इहो भाउ बि बिलाईंदा आहे, हुनजी वॾी महिरबानी जो असांजे प्रोग्राम में शामिल। ऐं भाउ ॿुधाए पियो त मां हुननि खां बिलाईंदा आहियां जो अॻु उहो बिलाईंदा आहे, हुनजी वॾी महिरबानी जो दिलि सां असांजो प्रोग्राम ॿुधो ऐं प्रोग्राम में शामिल थियो, हुनजी वॾी महिरबानी। ऐं दोस्त कुझु फेसबुक ते बि आहिनि असांजा, नज़ीर खोसो भाउ सूबतपुर बलूचिस्तान खां, मोहम्मद खान कुंभार, जमाल कुंभार बि फोन कंदा आहिनि जलोरी स्टाफ मीरपुर ख़ासि खां, ऐं रेहाना खान बखर खां, हुनजी वॾी महिरबानी, लख कुर्ब असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया। ऐं जलाल चांडी जो कलाम बि तव्हांजे बैकग्राउंड में हलाईंदासीं, ॿुधाईंदा रहंदासीं, ऐं कुझु दोस्तनि जा नाला बि अवां ताईं पहुचाईंदासीं। हुनजी वॾी महिरबानी जेके असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया, लख कुर्ब भाइरनि जा।

चाहमेन ही जेको जलाल चंड जो कलाम आहे तमाम बेहतरीन कलाम सदा हयात आवाज़ असांजो जलाल चंड जो ही मुंहिंजो जेको कलाम उन्हनि दोस्तनि जे नाम आहे जेके ब्लाइंड आहिनि ऐं अदीब आहिनि असांजा भाइर आहिनि भेनरनि उन्हनि जे नाम मां ही कलाम कयां पई। सॼो प्रोग्राम मुंहिंजो उन्हनि जे नाम अलाह से हुनखे ख़ुशि कंदो रब साईं हुनखे वॾी हयाती ॾींदो जो वीचारा पंहिंजो वक़्तु इहो हिन हिसाब सां गुज़ारनि पिया। त समन जलाल चांडी जी हिन कलाम ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुची पियो पंहिंजे पुॼाणी ते। हयाती पे ख़ैर अवां सां मुलाक़ात ज़रूर थींदी तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जूण जो खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगाहबान।

0: GAFM Network. Abhi Budhopya, GA Hyderabad Matyari, FM 91.6. Sindh Jo Awaaz.
1: O Pita Ja Pitai, Pita Deva Se Noor Mujho To.
0: Sindh Jo Awaaz. Budhanda Raho.
2: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
5: ब्रॉट टू यू बाय
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट.
7: अडियाला जेल आंदो वियो, जेल में मौजूद पीटीआई बानी खे अडियाला जेल में वापस पंहिंजी सेल में मुंतकिल कयो वियो आहे. डॉक्टरनि जी छह रुकनी टीम पीटीआई बानी जो हुते बि मुआइनो कयो, टेस्ट सैंपल वरिता. पीटीआई बानी जी

0: अस्पताल स्टाफ के मोबाइल फोन की इस्तेमाल से भी पाबंद बहरा पुलिस बाद में शिफा अस्पताल पहुंची सिक्योरिटी इंतजाम को जायजो वरतो। मंजूराबाद वेझो पुरानी दुश्मनी तां नौजवान गोलियों हणी कतल लाश अस्पताल मुंतकिल बाज कंदो वरत बनी में कम कंदर 40 वरन जो अलाउद्दीन खोसको मारज वयो इतलाते खाणो पुलिस पहुंची मकतूल लाश तहवील में वठी अस्पताल मुंतकिल करे छो जरियन जो चवण है 4 साल अग प्लाट की मालिक तां मकतूल अलाउद्दीन खोसो तां करीम खोसो कतल थो वाके के प्लान में अलाउद्दीन खोसो के सदस्य भाटन कतल कयो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: जब तक माफी नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों के खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है, सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: सिंध की आवाज़
1: कंहिं भी क्या खबर ना है। यह गाल याद रखो तो जिन शे जो असा के पक्का है उन्हें जलाए ऐसा कुछ कौन करना है जिन शे जी असा के पक ना है उन्हें जलाए ऐसा पांजी चुस्तजू करना है। और जिन शे जी असा के पक्का हुई है वो है मौत तो किन मतलब ये अची वो जिन शे जी पक ही ना होंगी तो जिंदगी केतरी है असा चुस्तजू उन्हें ला पाया कह तो जिंदगी में हमेशा मुस्कुराईंदा रहो खिलंदा रहो हमेशा असो यो ही मैसेज रो है तो जिंदगी खुशगवार गुजारो खिलंदा मुस्कुराईंदा गुजारो तो प्रोग्राम में सॉन्ग भी शामिल कह हल्दी उन प्रोग्राम में शामिल थे तरीकेकार भी एक दफ़ो वह बुधाई हल्ला तो मोबाइल फोन राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वो इमारो लिखो स्पेस टू स्पेस का लिखो पांजो नालो पांजो गोठ या शहर जो नालो लिखी कर मोकलो असा 888 1

निखरनाल जो खूबसूरत आवाज़ तव्हांजो सुंदर समाधो त मुंहिंजा मिठा थियनि। दोस्तनि जा कुझु मैसेजिस बि आहिनि, उहे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं। गॾो गॾु तव्हांखे भला भला सॉन्ग बि ॿुधाईंदा हलूं। त असां सां प्रोग्राम में गॾाए ॻोठु दूरो बीहण खां शौकत अली बीहण, नादर अली बीहण, अली गुल बीहण, अदा दूरो बीहण वारा भाउ हुजा शौकत, नादर ऐं अली गुल, वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां मुंहिंजे शो में शामिल थिया आहियो। लख रुपए लख अहसान तव्हांजा। ऐं अदाजन चवनि था गुलाब सलाम, त वालेकुम सलाम मुंहिंजा मिठा। हुमर कना जे कलाम जी अदाजन फरमाइश कई आहे, जेको डेडिकेट कनि था ज़ैन बीहण ऐं ज़रियाब बीहण, रियाज़ अली बीहण खे। त महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, ज़ुल्फ़कार खे सलाम चई छॾिजो मुंहिंजे तरफ़ खां, ऐं उन खे बि हिकिड़ो सॉन्ग ज़रूरु डेडिकेट करे छॾिजो। महिरबानी मुंहिंजा मिठा, ख़ुशि हुजो। असांजे प्रोग्राम में असां सां गॾु आहे मोहम्मद इब्राहिम संदीलो, ॻोठ खां मोहम्मद हारून संदीलो, ऐं चवनि था मूंखे रऊफ़ मक्सीअ जो सॉन्ग ॿुधायो। त हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हांखे रऊफ़ मक्सीअ जो बि सॉन्ग ॿुधाईंदासीं। लख कुर्ब आहिनि तव्हांजा, तव्हां असांजा पुराणा लिसनर आहियो, तव्हांजे लाइ थोरी सारी मोहबतूं आहिनि, प्यार आहे, ऐं तव्हां असांजे शो में अहिड़े तरीक़े सां शामिल थींदा आहियो। त असां सां गॾु आहे फुलजी स्टेशन खां फौजी पठाण खान, ख़ोसो महिरबानी अदा तव्हांजी, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो। लख कुर्ब लख अहसान तव्हांजा मुंहिंजा मिठा साईं। लटको मोदी सांगड़ खां मोहम्मद सालिह प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे, ऐं चवंदा प्रोग्राम लाजवाब आहे, तव्हां ख़ुशि ऐं आबाद रखे। ॻोठ बाबू वीरो थरसा, अच्छा थर खां ही दोस्त जेको आहे दिलीप कुमार माण खे ॿुधी रहियो आहे, ऐं अदाजन सां गॾु आहे कुमार मेघवाड़ ऐं नवल रा मेघवाड़ ऐं दानिश कुमार, ऐं अदाजन चवनि था त शो ज़बरदस्त आहे। महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, त अहिड़े तरीक़े सां तव्हां असांजे शो में शामिल थी सघो था, ऐं शो में शामिल थियण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं मारो लिखो स्पेस, जो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो लिखी करे मोकिलियो असां 888-1 ते। अच्छा, उन सां गॾो गॾु ॿी बि तव्हांखे हिकड़ी ॻाल्हि चवंदा हलंदासीं, त तव्हां असांजे शो में शामिल थियो था त पंहिंजी एडवाइस बि ज़रूरु ॾींदा कयो, प्रोग्राम जे मुतालिक़ उहा एडवाइस हुजणु घुर्जे, उहा बि तव्हां ॾींदा, त उन सां असांखे अञा हिन प्रोग्राम खे वधीक बहितर खां बहितर बनाइण जो जेको आहे न, उहो असांखे तव्हांजी राय जे मुताबिक़ असां उन खे अञा वधीक सुठे खां सुठो करण जी कोशिश कंदासीं।

सनम सुहणो हुजे साकी पीअण वारा किथे मिलंदा त लैला सिस्टर्स जो ख़ूबसूरत आवाज़ आहे त मुंहिंजे मिठा ताईं वक़्तु थी पियो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ हलंदासीं। काफ़ी महिरबानी दोस्तनि जा मैसेजिस मुंहिंजे साम्हूं पिया आहिनि पंहिंजे ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत हथनि सां ऐं दिलि ऐं चाहत सां लिखिया आहिनि। उहे मैसेज उहे बि प्रोग्राम में ज़रूरु शामिल कंदासीं ऐं तव्हांजी पसंदि चूंड मौसीक़ी बि तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। हाणे ईअं आहे त वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, हलंदासीं ब्रेक जे तरफ़। ब्रेक खां वापसि ईंदासीं, वापसि ईंदासीं त तव्हांजा ॿिया बि मैसेज मुंहिंजे पंहिंजे पसंदि जा सॉन्ग हूंदा कुझु FM।

0: It's 11:30 a.m. This It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असां खे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि. हिन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान. तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे. कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे. तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाराए.
0: हर दिन हर पहर

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: उतां असांजो भाउ हबीब अल्लाह थे असांखे ॿुधी रहियो आहे। महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, चवनि था आपका शो वेरी नाइस आहे। महिरबानी प्यारा, अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे। तव्हां असांजे शो में शामिल थिया। मुज़म्मिल मलक, मलक कॉलोनीअ खां, ऐं ख़ालिद हुसैन मलक पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधनि पिया। ख़ालिद साईं, कहिड़ा हाल तव्हां जा? ठीकु आहीं, तबियत सही आहे तव्हांजी? ऐं मुज़म्मिल बि कीअं आहे? उहो बि ठीकु आहे। महिरबानी प्यारा, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो, उन जे लाइ हिकु दफ़ा तव्हांखे मां पंहिंजी तरफ़ खां भलीकार चवां थो। अदाजन मुमताज़ लाशारी जी कलाम जी फरमाइश कई आहे ऐं चवनि था त शो ॾाढो ज़बरदस्त आहे। त महिरबानी प्यारा, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो। असांजे शो में असां सां गॾु आहे ॻोठ ग़रीब बीहण खां चने सर बीहण पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे, जेको शायर यूनस बीहण उन सां गॾु आहे। प्यारा दिलशेर तिवणे जी अदाजन फरमाइश कई आहे त हाज़िर मुंहिंजा प्यारा साईं, दिलशेर तिवणे जो बि तव्हांखे कलाम ज़रूर ॿुधाईंदासीं। ऐं फिल वक़्तु मुंहिंजी प्ले लिस्ट में मौजूदु आहे रऊफ़ बख़्शी, अचो त रऊफ़ बख़्शी खे इंजॉय कयूं।

रौफत की जो खूबसूरत आवाज है, जो तो डायरेक्ट वे है दिल्ली में ऐं मुफ्त जो घर मिले तो जी आई नहीं हों घर मुफ्त जो हों तकड़ में मू वही वो पर वो उन जी तकलीफ थी है ना वो अंदी है उनको अहसास है वो बीणू चवण हों तमाम घणो ही खतरनाक हों दोस्तों मैसेजेस आज असा शो में उ शामिल कन्ा था हलो अस्सलाम वालेकुम भा गुलाब खान कड़ा हाल है नवा जहा वालेकुम असलम भा मुझो है फुल जी स्टेशन का फौजी पठान खान खोसो अदा मां बिल्कुल ठीक ठाक आया तुम बुधा तुम कि ठीक आयो तवी तबियत सही है उम्मीद है अल्लाह ताला तवा खैरियत कई हूँ मुझा मीठा सही मुझे तरफ का अवे खोड़ दफा भलीकार तुझे प्रोग्राम में शामिल गुट मोहम्मद तैयब तुनियों का हबीबुल्ला तुझे प्रोग्राम जो रो है चवन था सौंग बुधरायो चंड जो टुकड़ो लगे तो अज तू शमन अली मीराली की आवाज में है। शमन अली मीराली यार ढो जबरदस्त सिंगर है मुझे पसंदीदा है बिल्कुल आई कोशिश कन्दी अदा हबीबुल्ला तवा के तहज पसंद सॉन्ग बुधाया गोट ममन तैयब खां हबीबुल्ला भाजन जो बो मैसेज ए सागी उन में फरमाइश लिखल है प्यारा बिल्कुल तवाजी पसंद जो सॉन्ग अस जरूर प्ले कन्दी गोठ हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी या मोरी है या मरी है उनका कुर्बान अली खास के लिए पंजो प्रोग्राम बुधे पो मेहरबानी अदा तवाजी तवाज शो में शामिल थे कुर्बान साई तवा सदाई शो में शामिल थन्दा आयो उन लख कुर्ब लख एहसान गोट मोहम्मद तैयब खां अदा हबीबुल्ला जो ही टो मैसेज आयो है बिल्कुल अदा तक पक से हाँ बुधाईदम तुम बेफिक्र वो मेहरबानी प्यारा तवा असा शो में शामिल थे आयो फुलजी स्टेशन खां असो प्यारो भा किराए डॉक्टर हसीना सुमरो डॉक्टर कैप्टन मरियम कोरे जो साहिबा आजाद अली खोसो पांजो प्रोग्राम बुधन पिया मेहरबानी तवाजी अदा चवन था अस्सलाम वालेकुम प्यारा भा गुलाब खान वालेकुम असलाम अदा खुश हो जो आबाद हो जो मेहरबानी तानी खान वान का वाहिगुरु खास के लिए जो ही बो मैसेज में शो में शामिल मेहरबानी प्यारा तवाजी भी तुम प्रोग्राम में शामिल थे आयो लख कुर्ब तवाजा लख एहसान प्रोग्राम में तवाखे हुमेरा चन्ना जो खूबसूरत आवाज है उन्हीं की तरफ हली कर हुमेरा चन्ना के आवाज में सॉन्ग बुधाइंदा छो उन ब फरमाइशू अची चुकी हुई तो सोचो थी तो हुमेरा के हाँ मौको दीजिए

0: GAFM 88 Network, सिंध की आवाज।
1: अच्छा अम्मा, अच्छा वारन।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

अच्छा हक मौजूद सदा मौजूद अदी असि लिखी थी डॉक्टर हसीना सुमरो बदीन खां लिखी रही है चवे थी अदा सवे तसो मैसेज गलत पढ़ो हो बिल्कुल इन ही हुए गलत मुखा मैसेज पढ़ी वो होंद शायद स्पेस की जी है ना तुम जो मैसेज लिखो हो ना उन स्पेस मुकमल खत्म हो गल सदल मैसेज हो जैसे कर गलती थी वही डॉक्टर हसीना सुमरो है वह किथा बदीन खां पे प्रोग्राम में शामिल थी है बदीन खां पान बुध रही है मातली स्टेशन का पान बुध रही है मेहरबानी अदी हसीना तुम असा प्रोग्राम में शामिल थी हो फौजन सुमरो के कलाम की फरमाइश की अथन हाजिर फौजन सुमरो की फोल्ड भरे पो है असा फौजन सुमरो तमाम बेहतरीन रागी है न सिर्फ यह मातली बदीन जिले में बुधी वी है बल्कि पूरी सिंध में पूरी पाकिस्तान में पूरी दुनिया में बुधी वी है जरूर तक दिल जा फौजन के आवाज में कलाम बुधाई गोठ मोहम्मद तैयब थेबो खां हबीबुल्ला थेबो पांच प्रोग्राम बुधी रहा अदाजन जो टो मैसेज चौथो मैसेज अदाजन जो असाजे शो में शामिल थो है मैसेज के जरिए चार दफा मेहरबानी अदा तवाजी तवे शो में शामिल थे आयो लख कुर्ब तवा लख एहसान असाजे प्रोग्राम गड है फुलजी स्टेशन का फौजी पठान खान खोसो अदा पठान फौजी साहब मेहर तवाजा अल्लाह से तुश आबाद रखे अड़े तरीके से तो शो में शामिल थी कर।

शमन अली मिठाले जी खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजी सुंदर समाज में मुंहिंजे मिठा साईं वक़्तु थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ न्यूज़ ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं वापसि अची करे शामिल कंदासीं तव्हांजा मोकिलियल मिठा मिठा मैसेज जेसि ताईं तव्हां केॾे बि न वेंदा ॿुधंदा रहंदा सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ GFM

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: Express PM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
6: Brought to you by
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर।
8: Easy to pour, easy to store. जहाँ मामता वहाँ डालता।
9: शाम जे परे वजीर असद हसन अल सुबान जे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दिफा सलामती जे शोबन में राबतन के वधाण पाकिस्तान शाम विच में मिन तरफन लागापन के वधिक मजबूत बनाने जे अजम जो वर्जाओ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान शाम विच में पुराणन भारन लागापन के उजागर कंदे आलमी अमून इलाकाई इस्तेकाम बाबत पाकिस्तान जे मौके पेश कयो। गलियल सलामती जे चैलेंजन के मुंह डेण लाइ सरकार आहे। पीटीआई बानी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल चेकअप बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल। पीटीआई बानी के डॉक्टर सेहतमंद करार दिनों। वफाकी वजीर अता तारड़ जी दावा। अता तारड़ जो चवण है डॉक्टर की छह रुकनी टीम पीटीआई बानी जो तिबी मुआइनो कर तिबी मुआइने वक्त अस्पताल में शिफा अस्पताल जा डॉक्टर भी मौजूद हुआ। पीटीआई बानी की भेण उज़मा खान भी मुआइने वक्त मौजूद हुई। पीटीआई कारकुनन सिक्योरिटी जो मसलो पैदा कयो। पीटीआई बानी के शिफा अस्पताल बाहरां सिक्योरिटी खदशन सबब पंज अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। बानी पीटीआई के जडे भी जरूरत हूंदी संदस मुआइनो करायो वेंदो।

0: मंजूराबाद वेझो पुरानी दुश्मनी तां नौजवान गोलियूं हणी कतल लाश अस्पताल मुंतकिल बासगंडो वट बनी में कम कंदड़ 40 वरन जो अलाउद्दीन खोसो मारजी वियो उतला ते खाण पुलिस फौजी मक़तूल जो लाश तहवील में वठी अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो घरनि जो चवण आहे त 4 साल अॻु प्लाट जी मालिकीअ तां मक़तूल अलाउद्दीन खोसो हथां करीम खोसो क़तल थियो हो वाके जी पलान में अलाउद्दीन खोसो खे संदसि ई भाइटनि क़तल कयो आहे
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो जीए एफएम 91.6
3: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असाजे बार पहिरीं पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दियां तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण सां बार जी इम्यूनिटी जेका उहा बेहतर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
4: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

त तमाम ये सजे प्रोग्राम में अड़े तरीके से शामिल थी सको था पंजे मोबाइल फोन जो राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वो एम आर ओ लिखो स्पेस स्पेस का लिखो पांच नालो पांच गोठन शहर जो नालो लिखी कर मोकिलो ट्रिपल एट वन से प्रोग्राम में शामिल क्यों फौजा सुमर जो खूबसूरत आवाज उनके उम्मीद तो तब गज इंजॉय कदा।

सजसमुंड जो खूबसूरत आवाज है तवाज सुंदर तमाते तो मुझे मिठा सही तवा सने प्रोग्राम में शामिल थी सको था बजरे एसएमएस एसएमएस का जो तरीके का सहलो है आसान है जन दोस्तों जो मैसेजेस असन जी शो में आया है तो वे भी पाजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलो असान प्रोग्राम में भिरिया शहर का है अवामी शायर आजिज अमानुल्ला विस्तड़ो चवन था अनवर विस्तड़ो जो डेडिकेट कंदा भूरो खान लाखो गुलाम सरवर बागाई अलहद पोखर अदा सही मेहरबानी तवाजी भा मुजा आजिज अमानुल्ला विस्तड़ा साहब तवा असान प्रोग्राम में शामिल थे आयो मुझे तमाम घनी खुशी थी है तमाम पुराना सीनियर लिसनर्स आके जन दोस्तों के तहां कलाम डेडी अलह रितु खोखर साहब आगाही हुए अवां हो तमाम घनी खुशी थी मुझे तवा जो मैसेज दिसी कर रखो आबाद हो वडी मेहरबानी तवा असान प्रोग्राम में शामिल थे आयो असा गड है शहबाज अली खोसो डॉक्टर हसीना सुमरो चवन था गुलाब खान अस मुख्तियार शीद जो कलाम बुधा तहजी पसंद इन शो में बुधाए चुको आयो फौजा सुमरो के आवाज में हुए उम्मीद है तुम बुध हों के पसंद भी आयो हों तवे प्ले करबानी तवा प्रोग्राम में शामिल थे आयो गोठ उमेद अली जरदारी का गुलाम सरवर बागाई पंज प्रोग्राम बुधे पे चवे तो सर सलाम त वालेकुम सलाम साईं जा कड़ा हाल नवा जा ठीक है काफी दिन का मैसेज पांजे पैनल से पढ़ी करे तमाम घनी खुशी थी रही है तवां प्लीज अताउल्ला खान जो असां के कलाम बुधरायो डेडिकेट करे तो बुरो खान लाखों के आज अमानुल्ला विसड़ो के मेहरबानी मुझा प्यारा भा तवाजी तवा असां जे प्रोग्राम में शामिल थे आयो अदाजन जो बियो भी गोठ उमेद अली जरदारी का मैसेज है गुलाम सरवर बागाई भाजन जो उन्हें में भी सलाम चो अथन वालेकुम असलाम अताउल्ला के कलाम जी उत भी फरमाइश कई है डेडिकेट किया है साग्याई दोस्त बुरो खान लाखो आज अमानुल्ला विसड़ो के मेहरबानी प्यारा तवा मुझे शो में शामिल थे आयो तमाम घनी खुशी थी है मुख्तार शीदी जी कलाम जी फरमाइश की है कि अनॉन मानू मतलब उन्हें नालो पांजो कोन लिखियो है सिर्फ यो चो है तो मुख्तार शीदी जो कलाम बुधरायो तो हाजिर तवा के भी मुख्तार शीदी जो कलाम जरूर बुधराइंदासी असा गड है मीरपुर खास का अब्दुल्ला महर चवंदा अस्सलाम वालेकुम त वालेकुम अस्सलाम भा अब्दुल्ला चवंदा भाई आपका शो नाइस है जबरदस्त है मेहरबानी मुझे मिठा तवा शो के पसंद कर रहा है अल्लाह सही तवा के खुश रखे।

हुसैन ॻोठ बसीरो खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो ऐं खैरपुर तालको आहे फैज़गंज उतां खां ई अदा जन प्रोग्राम ॿुधे रहिया आहिनि ऐं चवनि था मेरी बेटी की सालगिरह आहे जिसका नाम बेटी की सालगिरह आहे जिसका नाम है गुलाम मुस्तफ़ा राजभर। कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाओ वो स्कूल गए हैं। जी हाँ बिल्कुल ॾाढो सुठो कमु आहे हुनजी सालगिरह आहे मल्हायो। नंढियूं नंढियूं ख़ुशियूं हूंदियूं आहिनि ज़रूर करणु घुर्जनि पर स्कूल वञी वियो आहे इहा अञा वधीक ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे छो जो असांखे पंहिंजे बचनि खे हिकिड़ो महफ़ूज़ मुस्तक़बिल ॾियणो आहे त हुननि खे तालीम ॾियणी पवंदी। दुनिया ॾिसो केॾी तरक़ी करे रही आहे दुनिया किथे वञी पहुती आहे ऐं अञा असां सिंध जा माण्हू टिकटॉक ते जेमहिल वञूं था त तेॾीमहिल असांजा जेके हिन दौर जा शाइर आहिनि वॾा वॾा शाइर जेके पाण खे वॾा वॾा शाइर सम्झनि था उहे नौजवान नसलनि खे ख़बर छा डिलीवर करे रहिया आहिनि। उहे नौजवान नसल खे फॾो फसाद डिलीवर करे रहिया आहिनि। हिकु हफ़्ते में तुंहिंजो पलान थींदो तोसां हीअं थींदो तोसां अहिड़े तरीक़े सां थींदो अहिड़े क़िस्म जी शाइरी जो आहे। असांजी वालदेन मां कॾहिं पंहिंजी सोसाइटीअ में इन कयूं जिथे तरबियत कयूं ऐं उन्हनि खे असां तालीम जहिड़ो ज़ेवर ॾियूं पोइ चाहे लाइ आहे त असांखे गॾिजी करे जेकर असां तमामु वॾे नुक़सान में असां हीअं त थी रही आहे न पिया कयूं उहा तरबियत ख़बर आहे केरु पियो करे उहा तरबियत या अहिड़े क़िस्म जी ॿियूं एप्लीकेशन जेके असांजे नौजवाननि जी तरबियत करे रहियूं आहिनि उनमें गैर इख़लाक़ी मवाद सां गॾोगॾु अलाए कहिड़े क़िस्म जो मवाद मौजूदु आहे जिथे ॿार उनखे ॾाढो ध्यान सां ॾिसनि था। जेके नौजवान छोकिरा आहिनि उहा त छॾियो पर नंढा जेके ॿार आहिनि जंहिंजी उमिरि 5 खां 7 साल आहे जेके सेलफोन न रहनि था ॿारनि जूं पंहिंजे ॿारनि खे आदत ख़ुदि अगरि का माउ घर में कमकार करे रही आहे ऐं उनजो ॿार उनखे तंग करे रहियो आहे जेको उहो कम न पई करे सघे डिस्टर्ब थी रही आहे त पोइ करे उहा हिकदमि ॿार खे रिझाइण जे लाइ दिल विंदराइण जे लाइ उन जे हथ में मोबाइल फोन ॾेई थी छॾे ऐं पाण पंहिंजा ॿिया कमकार करण में शुरू थी वञे थी त अहिड़ियूं जेके माइरूं आहिनि उन्हनि माइरुनि खे हथ ॿधी इल्तिजा कंदासीं त तव्हां ॿारनि खे मोबाइल फोन खां परे कयो। कमु जेको तव्हांजो रहिजे थो घर जो न ख़ैरु आहे भला जेकर उहो अधु कलाकु लेट थियो त को मसलो कोन्हे को तव्हांखे थोरी तकलीफ़ अचे थी पर तव्हां पंहिंजे ईंदड़ नसल खे सिक्योर कयो ईंदड़ नसल खे तव्हां महफ़ूज़ बणायो त जीअं असांजो ईंदड़ जेको नसल आहे न उहो इन क़िस्म जी जेकी गैर रवायती रस्मूं आहिनि गैर रवायती जेकी हरकतूं आहिनि उन्हनि खां बची सघंदो। त प्रोग्राम में वक़्तु थिए पियो ब्रेक जो हलंदासीं ब्रेक जे तरफ़ ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं वापसि अची करे तव्हांखे ॿुधाईंदासीं तव्हांजे पसंदि जा ज़बरदस्त सॉन्ग तेसि थोरी केॾां बि न वेंदा ॿुधंदा रहंदा सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ GFM नेटवर्क।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो आहे असांखे साईं, पोलियो जी वैक्सीन उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए।
0: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर सखर और सखर की आवाज GFM
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
2: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खुशबू दे हर लम्हा प्यार, यही है आवाज, यही है अंदाज।
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

मुख्तार शिदे जो खूबसूरत आवाज ऐं तव्हांजूं समातूं अधु सिंधी अधु उर्दू सॉन्ग आहे ऐं दोस्तनि जी फरमाइश हुई, काफ़ी मैसेजिस आया हुया दोस्तनि जा त असांखे मुख्तार शिदे जो कलाम ॿुधायो त बाबा मुख्तार शिदे प्ले कयो आहे जेको तव्हां ॿुधी रहिया आहियो। दोस्तनि जा मैसेजिस आहिनि प्रोग्राम जे आख़िर में, उहे बि शामिल कंदा हलूं। अस्सलाम वालेकुम प्यारा मिठा मोहबती माण्हू असांजा भाउ गुलाब खान बहन साहब। वालेकुम असलाम मुंहिंजा मिठा प्यारा भाउ, तव्हां बि मोहबती इंसान आहियो साहब, असां न आहियूं ऐं असां तव्हांजा भाइर आहियूं। मौला तव्हांखे ख़ुशि रखे। अदा जन फौजी पठाण खान इहो मैसेज कयो आहे ऐं चवे थो असांजा मैसेज पूरा कोन था पढ़ो। अदा तव्हांजा मैसेज जेके अचनि था न मूं वटि, जेके पहुचनि था, उहे मां पूरा पढ़ां थो। हाणे तव्हां लिखो था मैसेज सिंधीअ में, हाणे जेकर सिंधीअ में तव्हां मैसेज लिखो था त उहो अनकम्पलीट थी मूं वटि पहुचे थो, उहो मिसिंग।

टेक्स्ट जे मतिलब हिकिड़ी शिकिल सां मूं वटि पहुचे थो, जंहिंजे करे तव्हांजा मैसेज अगरि रहिजी था वञनि त अधु इन जे करे रहबा हूंदा। बरहाल अदा तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो। बादल शेख पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे शहर वाडकीअ खां, ऐं मुमताज़ लाशारी जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे। त मुंहिंजा मिठा साईं, प्रोग्राम जो वक़्तु हींअर पहुचण वारो आहे पुॼाणीअ ते। इनशा ताला हयाती रही नेक्स्ट जुमे ते शो जे दौरान तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग ज़रूर ॿुधाईंदुसि, तव्हां दिलि जाए करे छॾियो। ॻोठु मोहम्मद तैयब थेबो खां हबीबुल्ला थेबो पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे। अदा हबीबुल्ला, महिरबानी तव्हांजी, लख करोड़ रुपए लख अहसान आहे तव्हांजा ॻोठु। उमेद अली ज़रदारी खां ग़ुलाम सरवर बागाई चवंदा, सर अस्सलाम वालेकुम। त वालेकुम अस्सलाम। अदा ग़ुलाम सरवर भाउ, तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग मां प्ले कयो, पर जेके ॿोल तव्हां लिखिया विया उहो सॉन्ग लाइब्रेरी में मौजूद न हुजण सबब अताउला ईसा खान खिलगी जो मां ॿियो हिकड़ो ज़बरदस्त सॉन्ग प्ले कयो हुयो। उमेद आहे त उहो बि अव्हांखे पसंदि आयो हूंदो, जेको तव्हां डेडिकेट कयो हुयो भूरो खान लाखो खे ऐं आजो ज़मानो ला विस्तरो खे। त महिरबानी प्यारा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। खानवाण खां वाहिद बख्श लाशारीअ जो मैसेज, सॉरी वाहिद बख्श खासखेड़ीअ जो मैसेज आहे ऐं चवनि था बेस्ट प्रोग्राम आहे मुमताज़ लाशारी ॿुधायो। त हाज़ुर अदा, मुमताज़ लाशारी जूं ॿ टे फरमाइशूं वधी वियूं आहिनि, त कोशिश कंदासीं त मुमताज़ लाशारी तव्हांखे असां ॿुधायूं। त महिरबानी मुंहिंजा प्यारा साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। त प्रोग्राम म्यूज़िक मस्तीअ जो बि वक़्तु पहुची वियो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते, ऐं हमेशह वांगुरु तव्हांखे असां चवंदा आहियूं त वञण खां पहिरियां कुझु चंद तव्हांखे ॻाल्हियूं चवंदा आहियूं। उहे चवंदा आहियूं त पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखंदा कयो, पंहिंजनि दोस्तनि जो, मिटनि माइटनि जो, पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखंदा कयो। ऐं दुनिया आरज़ी आहे, फानी दुनिया आहे, हिन दुनिया में का ख़बर न आहे केतिरा ॾींहं आहियूं ऐं केतिरा ॾींहं ज़िंदा आहियूं, केतिरा पल असां वटि आहिनि। उन जे करे मोहबत वंडियो, ऐं मोहबत में मज़ो आहे। मोहबत खां सवाइ कुल्फत में, कॾहिं क़ब्रुनि में बि कुल्फत खणी मोहबत छॾे वेंदा आहिनि। अञा वधीक पंहिंजे उन्हनि जी पढ़ाईअ जे लाइ, उन्हनि जी तरक़ीअ जे लाइ पाण पतोड़णो पवंदो, तॾहिं वञी दुनिया सां तव्हां विख विख में ॾेई करे हली सघंदा। त प्रोग्राम जो वक़्तु पहुची वियो पुॼाणीअ ते। इनशाला ताला हयाती रही त वरी ईंदड़ प्रोग्राम ई तव्हां सां गॾु हूंदासीं। तेसि ताईं जे लाइ ॾींदा पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे इजाज़त। वेंदे वेंदे मुमताज़ लाशारी प्ले करे थो वञा, ऐं मुमताज़ लाशारी खे उमेद आहे तव्हां बि इंजॉय कंदा, असां बि इंजॉय कंदासीं।

0: تهذيب. अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: It's 1 PM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार.
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: ब्रॉट टू यू बाय
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
7: माहौलती नमूनन में भी पोलियो वायरस की तस्दीक की हुई. बलूचिस्तान ऐं पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल हिकु ऐं हमेशह लाइ गॾु आहे. फितनाल ख़वारिज ऐं फितनाल हिंदुस्तान दुश्मन अंसरनि जो क्रॉसी केस आहे, जेके रियासत ऐं आवाम विच में विछोटियूं पैदा करण लाइ इस्तेमाल थी रहियूं आहिनि. दुश्मन जूं समूरियूं साज़िशूं क़ौम जे घरेलू अज़म ऐं रियासत जे मज़बूत ऐं फैसलाइती रद अमल सां नाकाम बणाईंदासीं. ISPR मूजिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बलूचिस्तान जे अहम शख्सियतनि ऐं सियासी क़यादत JHQ में मुलाकात कई आहे. बलूचिस्तान जे अमुन इस्तकाम ऐं तरक़ी में नौजवाननि जे किरदार समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त बलूचिस्तान में नौजवाननि लाइ सलाहियतनि ऐं वोट नाहे. नौजवान मुआशिरे जो सभ खां वधीक मुतरिक ऐं उमीद भरियो हिसो आहिनि, तंहिं करे खेनि बाख़्तियार बणाइण ऐं क़ौमी तरक़ीअ में किरदार पाएदार तरक़ी लाइ इंतिहाई अहम आहिनि. खिलाफ़ जंग में वॾी क़ीमत अदा कई आहे. ख़ैबर पख़्तूनख़्वा ऐं बहन का बि सरज़मीन दहशतगर्दी ख़िलाफ़ इस्तेमाल. सदर आसिफ अली ज़रदारी पारां दहशतगर्दी सबबि मुतासिर थींदड़नि जी यादि में आलमी ॾियारे जे मौक़े ते मुतासिरनि सां हमदर्दीअ जो इज़हार. सदर जो चवणु हो त नौजवान नसल खे इंतिहा पसंदीअ खां बचाइण ज़रूरी आहे. घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो चवणु हो त दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ आलमी इताद ज़रूरी आहे. PTI बानी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल चेकअप बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल. PTI बानी खे डॉक्टरनि सेहतमंद करार डि॒नो आहे. अताउला तारड़ जो चवण आहे त डॉक्टरनि जी 6 रुकनी टीम PTI बानी जो तिबी मुआइनो कयो. तिबी मुआइने वक़्त पिम्स में शिफा अस्पताल जा डॉक्टर बि मौजूद हुआ. PTI बानी जी भेण

एक्साइज पुलिस के गिरफ्तार कयो। पुल के बाईपास कयो वियो आहे। हेरिन खे होल्डिंग कैंप ॾियो वियो आहे। मंजूराबाद वेझो पुराणे जवान गोलियूं हणी क़तल। लाश अस्पताल मुंतकिल। बासुनो कम कंदड़ 40 वरनि जो अलाउद्दीन कोसो मारिजी वियो आहे। इतलाह ते खाणो पुलिस पहुची मक़तूल जो लाश तहवील में वठी अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो आहे। ज़रियुनि जो चवण आहे त 4 साल अॻु प्लाट जी मालिकियत आहे। मक़तूल अलाउद्दीन कोसो हथां करीम खोसो क़तल थियो हो। वाके जी पलांद में अलाउद्दीन खोसो खे संदसि भाइटनि क़तल कयो आहे। सखर में 8 महीननि जे ॿार खे अगवा करण जी कोशिश। शहरनि ॿिनि औरतनि खे पकड़े वरितो। गोलीमार वारे इलाइक़े मां ॿिनि औरतनि अड़े तखो शहरनि ॿिन्ही औरतनि खे पकड़े पुलिस हवाले करे जंहिंखे तहवील में वठी वधीक कार्रवाई लाइ वुमेन थाणे ते वियो। मलीर नेशनल हाईवे लिंक रोड ते ट्रॉलर जो कोच खे टकर वॼणा फोर्थ रेस्क्यू टीम पहुची लाश जिना अस्पताल मुंतकिल करे छॾिया। फोतियुनि जी सुञाणप न थी सघी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो, त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
0: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी
1: निकली आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम सोचे और ही खत्म।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KT
5: ब्रॉट टू यू बाय
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो

आहे खे कंहिं बि अस्पताल मुंतकिल कयो वेंदो ऐं इलाज जा तफ़सील बि न ॿुधाया वेंदा। सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम जी भञकड़ी कई वई आहे। जेकॾहिं अदालती हुकुम ते अमल करणु मुश्किल आहे त पोइ जमहूरियत कीअं हलंदी। इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गोहर चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम में को बि मुंझारो न हो, उन ते अमल न थियणु बदकिस्मती आहे। ॻाल्हियूं ईअं न आहिनि थींदियूं ऐं न ई वरी जमहूरियत ईअं हलंदी आहे।

कसम खणी चवां थो त बानी पीटीआई जी सिहत बिल्कुल ठीक आहे। पीटीआई बानी सां संदसि भेण जी मुलाकात थी चुकी आहे। इहा ई ॿुधाए सघे थी त बानी सिहत चाढ़ण लॻो। वज़ीर ख़्वाजा आसिफ जो इलाज मां बि रासी

अॼु बि नवाज़ शरीफ़ जी फेडरल मज़ाक उॾायो वेंदो आहे। बानी पीटीआई बि मज़ाक उॾायो, जंहिं जूं के मौजूदु आहिनि उन्हनि खे अहसास न हो त बीमारी हिकु हक़ीक़त आहे। डिजिटल तब्दील नवाज़ शरीफ़ इस्लाम जी

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो आहे त बलोचिस्तान ऐं पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल हिकु ऐं हमेशह लाइ गॾु आहे। फितना ख़वारिज ऐं फितना हिंदुस्तान दुश्मन अंसरनि जो प्रॉक्सीज़ आहिनि जेके विच में विचोटियूं पैदा करण लाइ इस्तेमाल थी रहियूं आहिनि। दुश्मन जूं समूरियूं साज़िशूं क़ौम जे घरेल अज़म ऐं रियासत जे मज़बूत ऐं फैसलाती रद अमल सां नाकाम बणाईंदासीं। ISPR मौजूद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बलोचिस्तान जे अहम शख़्सियतुनि ऐं सियासी क़यादत जे HQ में मुलाक़ात। बलोचिस्तान जे अमून इस्तेकाम ऐं तरक़ी में नौजवान मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾेवत कई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो आहे त बलोचिस्तान में नौजवान लाइ सलाहियतनि ऐं मौक़नि जी का खोट न आहे। बलोचिस्तान जो अवाम जी तकदीर बदिलाए सघे थो।

0: कराची जे छहनि जिलनि में पोलियो वायरस जी मौजूदगी जी तस्दीक। कराची सेंट्रल ईस्ट कयामाड़ी मलीर साउथ ऐं वेस्ट जे माहौलियाती नमूननि में पोलियो वायरस जी तस्दीक। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो मुताबिक़ जून महीने दौरान कराची जे छहनि जिलनि जे माहौलियाती नमूननि में वायरस जो पतो न पियो हो। जुलाई में कश्मोर ज़िले जे माहौलियाती नमूननि में पोलियो वायरस जी तस्दीक थी हुई। जुलाई महीने में रावलपिंडी बलोचिस्तान में चमन डेरा बुगटी कोयटा समेत केपीके जे शहरनि बनून ऐं पिशावर जे माहौलियाती नमूननि में बि पोलियो वायरस जी तस्दीक थी हुई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोइ ॾहनि सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशो वधीक ॾहनि सालनि खां। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
4: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज,
5: जिसकी फजाओं में है बन के मोहब्बत फैम की आवाज,
4: सिंध की आवाज।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, सिंध जो आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे हीउ बूस्टर
0: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मेरी तो हर सेंस आज नॉनसेंस हो गई है।
1: हठ धर्मी छो करे रहा हैं डॉक्टर उज़मा खान, डॉक्टर फैसल सुल्तान नए खबर केपीके जे वडे वजीर सोहेल आफरीदी जी केपीके हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर उज़मा खान चयो तो गुजरियल रात पीके अयबानी के शिफा अस्पताल आणण टीम जांदो वयो, जिते डॉक्टर आरिफ ऐं ॿियनि डॉक्टर मुआइनो कयो। उते कंहिं खे बीमारीअ जो मेडिकल हिस्ट्री बाबति का बि ॼाण न हुई। सोहेल आफरीदी चयो त हीउ इख़लाक़ी अहिड़ी सतह ते पहुची चुका आहिनि जो अदालत खे बि नथा मञनि। असां ज़रूर हिन मामले ते तो हिन अदालत जी कार्रवाई लाइ वेंदासीं। पाकिस्तान ऐं गूगल विच में क़ौमी डिजिटल तब्दीलीअ लाइ मुफ़ाहमती याददाश्त ते सहियूं। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में गूगल टीम जे मान में आजियाणो बि ॾिनो। हलंदड़ साल पाकिस्तान में 1.5 लख गूगल करियर सर्टिफिकेशन जो हदफ़ मुक़ररु। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जे क़याम लाइ बि पाकिस्तान ऐं गूगल विच में सहकार ते इतफ़ाक़। मार्शल सैद आसिम मुनीर चयो आहे त बलूचिस्तान ऐं पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल हिकु ऐं हमेशा लाइ गॾु आहे। फितना अल ख़वारिज ऐं फितना अल हिंदुस्तान दुश्मन अंसरनि जो प्रॉक्सीज़ आहिनि जेके रियासत ऐं अवाम विच में विछोटियूं पैदा करण लाइ इस्तेमाल थी

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 3:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ. पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है सामने आ सकती है. बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं. इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है. आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आपका बच्चा वैक्सीन डोज से हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे.
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM सिंध की आवाज़.

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

खे शिफा अस्पताल आणण टिम जांदो वियो हो, जिते डॉक्टर आरिफ ऐं ॿियनि डॉक्टरनि मुआइनो कयो। उते कंहिंखे बि बानीअ जी मेडिकल हिस्ट्री बाबति का ॼाण न हुई। सोहेल आफरीदी चयो आहे त उहे इख़लाकी पुछीअ जी अहिड़ी सतह ते पहुची चुका आहिनि जो अदालत खे बि नथा मञनि। असां हिन मामले ते तोहीन अदालत जी कार्रवाई लाइ वेंदासीं। पाकिस्तान ऐं गूगल विच में क़ौमी डिजिटल तब्दीली लाइ मुफ़ाहिमती याददाश्त ते सहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ इस्लामाबाद में गूगल टीम जे मान में आजियाणो बि ॾिनो। हलंदड़ साल पाकिस्तान में 1.5 लख गूगल कैरियर सर्टिफिकेट जो हदफ़ मुक़ररु। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जे क़याम लाइ बि पाकिस्तान ऐं गूगल विच में सहकार ते इतफ़ाक़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो आहे त बल्कि हिकु

0: नाले कंपनी के जमीन डिनी वही हुई। जमीन के 15 दिन अंदर तहवील में वठण की हिदायत कई वही। नेब मौजूद जमीन की कुल मालियत 2.5 अरब रुपये का है। हैदराबाद के श्री गोठ में जमीन अंदर मुख्तलिफ हंधन से ओचितो धमाका थियण सबब खौफ ए हिरास पखिड़ वो है। धमाकन सबब भाजी विक्रो कंदड़ एक जणो जख्मी थी पयो। केतरनि ही रक्षाउनि जा शीशा टुटी पया। ज़रियन मौजूद धमाकन जो सबब गैस लाइन फाटण बुधायो पियो वञे। वाके की वधीक जांच जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी सुनते रहो GAFM 91.6।
3: सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻरायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर इहो सबबु न बणंदो।
4: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़ GFM 91.6।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by.
4: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
5: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो आहे असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज
3: GFM 91.6। अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।

0: तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 Network सिंह की आवाज।
1: This transcript is brought to you by
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
1: brought to you by
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
5: किल करण ते अपोजिशन जो सख्त रद अमल। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की सदारत हेठ अपोजिशन अगवाणन की अहम गडजाणी। अगवाणन गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त काल जेको कुछ थियो उन जो अंदाजो न हो। अदालत मेडिकल बोर्ड जोड़ण जो हुकुम दिनो हो, उन ते अमल न थियो आहे। टिन सालन का अदालतुन जा चक्कर लगाए रहा आयूं पर इंसाफ न पियो मिले। हाँ, इंसाफ लाए अवामी अदालत में भी वेंदासीं।

पीटीआई बानीअ जो तिबी मुआइनो शिफा इंटरनेशनल न पर पिम्स अस्पताल में कयो वियो। वफाकी वज़ीर अता तारड़ जो इतराफ़। अदा तारड़ जो चवण हो त डॉक्टर पारां तिबी तौर सेहतमंद करार ॾियण खां पोइ पीटीआई बानीअ खे सुबुह 5 वॻे ॿीहर अडियाला जेल मुंतकिल कयो वियो। पिम्स में अलशिफा अस्पताल जा डॉक्टर्स बि मौजूद हुआ। पीटीआई बानीअ जी भेण उज़मा ख़ान इलाज जी समूरनि मरहलनि दौरान मौजूद हुई। पीटीआई कारकुननि जे करे जेका सूरतहाल रस्ते में ऐं अलशिफा अस्पताल ॿाहिरां हुनखे नज़र में रखी बानी पीटीआई खे पिम्स अस्पताल आंदो वियो। पार्लियामानी मामलनि वारे वज़ीर तारिक़ फज़ल पानी पीटीआई जा ज़रूरी तिबी मरहला मुकमल थी विया आहिनि न कई वञे। वफ़ाक़ी हुकूमत पीटीआई बानीअ खे अस्पताल मुंतकिल करण वारे केस में ॿीहर नज़रसाने जी दर छॾी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तरफ़ां रजिस्ट्रार जी मुतफ़र दरख़्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल कराई वई। इन खां अॻु अदालत नज़रसानी दरख़्वास्त एतिराज़ लॻाए वापसि कई हुई। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ख़ान चयो आहे त उमेद न हुई त बानी पीटीआई खे कंहिं ॿी अस्पताल मुंतकिल कयो वेंदो ऐं इलाज जा तफ़सील बि न ॿुधाया वेंदा। सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम जी भञकड़ी कई वई आहे। जेकॾहिं अदालती हुकुम ते अमल करणु मुश्किल आहे त पोइ जमहूरियत कीअं हलंदी। इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गोहर चयो त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम में को बि मुंझारो न हो, हुन ते अमल न थियणु बदकिस्मती आहे। ॻाल्हियूं इएं न आहिनि थींदियूं ऐं न ई वरी जमहूरियत इएं हलंदी आहे।

कसम खणी चवां थो त पीटीआई बानी जी सिहत बिल्कुल ठीक आहे। पीटीआई बानीअ सां संदसि भेण जी मुलाक़ात थी चुकी, उहा ई ॿुधाए सघे थी त बानीअ जी सिहत कीअं आहे। सिहत जे मामले खे सियासत जे वर

न घुर्जे। दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ जो कौमी असेंबली में खिताब। ख्वाजा आसिफ चयो तो पीटीआई बाने की अख बेहतर थी रही है। ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन लाइ भी इलाज जारी है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट अवां भी डिसी वठो, असां भी डिसंदासी। अज भी नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की गाल करे मजाक उड़ायो वेंदो आहे। पीटीआई बानी भी मजाक उड़ायो हो, जंहिंजूं केतिरियूं ई वीडियोज़ मौजूद आहिनि। उन्हनि खे अहसास न हो त बीमारी हिकु हक़ीक़त आहे।

सुठो माहौल ठयो हो, खबर नाहे केर उनके खराब करे छे तो। पीटीआई बानी के अस्पताल आणण ते समूरो मुल्क खुश हो, हाँ मुल्क परेशान है तो ही छा पियो थे। कौमी असेंबली में गालाइंदे अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजी चयो तो पीटीआई बानी की भेनरन के शिफा अस्पताल में बंद कयो वयो, खबर नाहे पियो करे।

पाकिस्तान ऐं गूगल विच में क़ौमी डिजिटल तब्दीलीअ लाइ मफ़ामती याददाश्त नामे ते सयूं। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में गूगल टीम जे मान में आजियाणो बि ॾिनो। हलंदड़ साल पाकिस्तान में 1.5 लख गूगल कैरियर सर्टिफिकेट्स जो हदफ़ मुक़ररु। AIA सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जे क़याम लाइ बि पाकिस्तान ऐं गूगल विच में सहकार ते इतफ़ाक़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो आहे त बलोचिस्तान ऐं पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल हिकु ऐं हमेशह लाइ गॾु आहे। फितना ख़्वारिज ऐं फितना हिंदुस्तान दुश्मन अंसरनि जूं प्रॉक्सीज़ आहिनि, जेके रियासत ऐं आवाम विच में विछेटूं पैदा करण लाइ इस्तेमाल थी रहियूं आहिनि। दुश्मन जूं समूरियूं साज़िशूं क़ौम जी गॾियल अज़म ऐं रियासत जी मज़बूत ऐं फैसलाती रद अमल सां नाकाम बणाईंदासीं। ISPR मूजिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां बलोचिस्तान जे अहम शख़्सियतुनि ऐं सियासी क़यादत GHQ में मुलाक़ात कई। मुलाक़ात दौरान बलोचिस्तान जे अमन इस्तेहकाम ऐं तरक़ीअ में नौजवाननि जे किरदार समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। फील्ड मार्शल चयो त बलोचिस्तान में नौजवाननि लाइ सलाहियतुनि ऐं मौक़नि जी का खोट नाहे। बलोचिस्तान जो अवामी बलोचिस्तान जी तक़दीर बदिलाए सघे थो।

0: छठे जिले में अरबे रूपये के 425 एकड़ सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलाटमेंट जो स्कैंडल जाहिर। नेब की जांच बाद लैंड यूटिलाइजेशन खाते मीरपुर साकरो के देह घारो में 425 एकड़ जमीन की गैर कानूनी अलाटमेंट रद्द कर छी। लैंड यूटिलाइजेशन खाते मूजिब सुप्रीम कोर्ट के 2012 ईस्वी वाले हुकुम तहत सरकारी जमीन की खानगी अलाटमेंट से पाबंदी है। पाबंदी बावजूद जालसाजी जरिए सॉल्ट वर्क्स नाले कंपनी के जमीन डिनी वही हुई। जमीन के 15 डीह अंदर तहवील में वठण की हिदायत कई हुई। नेब मूजिब जमीन की कुल मालियत 2.5 अरब रुपये का है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असा बार बार पंजे बारन के पोलियो या कतरा छो प्यारियों जो त असा जे बार पेरी पोलियो या कतरा पी चुको है। मुंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पियण सा बार जी इम्यूनिटी हाणे जका के माल न थी पोलियो जड़े मुजी महफूज रह।
4: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमाती,
5: जिस रची पसी है बन के मोहब्बत का सास।
4: नेटवर्क की आवाज़।

0: क्या बात है जना, बहुत प्यारा सा गाना हमने आपके समाधान की नजर किया। असरार की बहुत बेहतरीन सी प्यारी सी वॉइस में 520 टाइम इज राइट नाउ। शाम के 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। ड्राइव कर रहे हैं तो स्लोली ड्राइव। जी जना बिल्कुल, क्योंकि आपने मौसम का मजा भी लेना है का, और मतलब ये जो सब चीजें रास्ते होती हैं, स्पीशियस होती हैं, और इन सबको बहुत ज्यादा मजे से आप लोग इंजॉय करते जाएंगे तो आपका सफर बहुत अच्छे तरीके से कट जाएगा। वेल, हमारा फोन नंबर आप जरूर नोट डाउन करें, जो कि हम आपको बताने लगे हैं, 03000113488, जिसपे कॉल करके आप हमारे साथ गपशप कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ हैं, क्यों हैं और जनाब क्या कर रहे हैं, हमारे साथ शो को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेते हैं शो की पहली पहली कॉल, देखते हैं लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, मुझे प्यारा मीठा जानी के रहे असा सबनी सा गडो गड। एग्जैक्टली तव्हांजी वॉइस टोन मूंखे ख़बर पइजी वेंदी आहे त कुर्बान अली ख़ासि खेली आहे। हाय इश्क हुआ बर्बाद हुआ ॿियो ठीक ठाक मज़े में सफ़ा वाह वाह वाह वाह वाह वाह। जाम शोर जी हवाऊं इलाही ॿुधियूं आहिनि त जाम शोर जे लाइ हवाऊं इलाही थधी हूंदियूं आहिनि। अच्छा कुर्बान ख़ासि खेली साहब, तव्हांखे मुंहिंजी आवाज़ प्रॉपर अचे थी? सही डबल में आवाज़ अचे थी। हलो कोई ॻाल्हि आहे, तव्हां हिकु टिकट में ॿ मज़ा वठो, डबल आवाज़ में एंजॉय कयो। मां तव्हां खां हिकिड़ो सवाल कयां भला,
1: भले सवाल पुछो।
0: अहिड़ी कहिड़ी शइ आहे जेका भॼी त वेंदी आहे पर आवाज़ न ईंदी आहे? माना उर्दू में बि ॿुधाए त ऐसी कौन सी वो चीज़ है जो टूट जाए तो आवाज़ नहीं करती लेकिन टूट जाती है? क्या
1: पाचूला? साया।
0: साया भी कभी टूटते हुए देखा है आपने? ये तुक्के पे तो हमारी सारी जिंदगी गुजर गई ठाकुर। माना तुक्को है यहाँ, तुक्को है यहाँ, दुक्को।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलो ठीक है, ॾिसूं था तव्हांजो दुको हलियो या कोन हलियो, पर तव्हां इहो ॿुधायो तव्हांजे ॻोठ में मौसम कीअं आहे? अच्छा कुर्बान भाउ, गानो कहिड़ो ॿुधणु चाहियो था? कहिड़ी कहिड़ो गानो?
1: राति जा
0: तारा। इहो वरी कंहिंजो आहे? अहमद मुगल जी। ओके ओके ओके, गज़ल ॿुधाईंदा कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो? जी ओके, ॿियो वालेकुम अस्सलाम कुर्बान भाई। जी जनाब, हमारे साथ कुर्बान ख़ासि खेली भाई थे और जनाब इनका कहना है कि मुझे गाना सुनवाए जाए, रात जा तारा छो था तू न ईंदे, चवन था तू न ईंदे। ओके जनाब, रात जा तारा अगरि चवन था त पोइ राति जे तारनि जी ॻाल्हि मञे छॾियो, छो त राति जा तारा कॾहिं बि कूड़ न आहिनि चवंदा।

0: असां तव्हां सभिनी दोस्तनि सां गॾु मौजूदु आहियूं 5 खां 7 बजे ताईं ऐं तव्हां असांखे कॉल करे सघो था। असां तव्हांखे पंहिंजो नंबर ॿुधायो आहे ऐं हींअर वठूं था शो जी हिकिड़ी ॿी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। हैलो जी जनाब, लॻे थो त मुंहिंजो कॉलर भाउ अची त चुको आहे पर ॻाल्हाए छो नथो। हैलो, अस्सलाम वालेकुम कॉलर भाउ। हैलो हैलो, चलें जनाब, कोई बात नहीं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर, और आप जहां कहीं पर भी हैं हम आपका वेट कर रहे हैं, आप हमसे बात करें, गपशप करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: के रदा सबनी सा गदो गद गुलाम अब्बास भाई, तुम्हारी आवाज सफा डिस्टर्ब थी गई है, अलाए डबल डबल थी अचे, अजीब अजीब थी अचे। हाँ, किथा पे कॉल कियो, किथा पे कॉल कियो अदा? अभी जानो खा। ओके, गुलाम अब्बास भाई छा कंदा आयो? माशाल्लाह, प्राइवेट जॉब तांजी कीअं थी हले? सफा जबरदस्त। अच्छा गुलाम अब्बास भाई, इहो ॿुधायो त जेको शइ भॼी वेंदी, कोई अहिड़ी शइ आहे जेको भॼी वेंदी आहे पर आवाज़ न ईंदो, उहा छा शइ
1: आहे?
0: ढुको। अच्छा गुलाम हुसैन भाउ, मां अहमद मोगल जो गानो थो हलायां, कंहिंजे नाले सां करणु चाहियो? जी जी, वाह वाह वाह, पकोड़ा बि खाओ था, चांवर बि पियो था। अकेला अकेला पेट में सूर पवंदव। तव्हां मुंहिंजी साइड सखल जी साइड करे मुंहुं करे हिकु कोप चांहि जो बि पियो ऐं पकोड़ा बि खाओ। हा त जीअं तव्हांजे पेट जे सूर खां बचजी वञो। थैंक यू गुलाम अब्बास भाउ, थैंक यू सो मच, इंजॉय कयो दोस्तनि सां गॾु। जी जनाब, हम चाहते हैं कि आप भी इंजॉय करें और हंसते मुस्कुराते रहें। अब टाइम क्या हुआ चाहता है जनाब, 26 हुआ चाहते हैं, तो हम चलाते हैं आपके लिए जबरदस्त सा गाना एक, और आप हमें कॉल, चलिए जनाब एक और कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद गाना चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: रात थे थी तो सूरज जागन था।
0: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब, केरे सा सबनी सा गड़ो? ज़ुहैब साहब। लाड़काणे वारा खेर सां अची विया हिन खेर सां, हो जमालो ब्या ज़ुहैब भाउ, कहिड़ा हाल चाल अथव?
3: हा
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, कम छा कंदा आहियो ज़ुहैब भाउ?
3: कम कार गॾु कंदुमि पर हाणे ड्रिंक थी वियो।
0: छा थी विया आहियो?
3: कोई
0: हुई, कोई ॻाल्हि नाहे, कोई ॻाल्हि नाहे, अलाह ताला तव्हांखे बि तमामु घणी क्वालिटी ॾिनी हूंदियूं। जी जी जी, कोई मसइलो न आहे। अच्छा, इहो ॿुधायो तव्हांखे अॼु जेको असां अहमद मोगल ॿुधायूं था, कंहिंजे नाले सां करणु चाहियो?
3: अहमद मोगल, मां पंहिंजे भाउ जे नाले कंदुमि।
0: सिर्फ़ ई सिर्फ़ भाउ जे नाले?
3: हा।
0: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है ज़ुहैब भाई, आपकी जिंदाबाद।
3: अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखंदो, पूरी टीम खे ख़ुशि रखंदो।
0: थैंक यू ज़ुहैब, अलाह तव्हांखे
3: दोस्त ॿुधंदा।
0: वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब भाउ, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो, असांखे ज़रूर ॿुधंदा रहो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ बहुत प्यारे से ज़ुहैब भाई फ्रॉम लाड़काना, और लाड़काना वाले तमाम दोस्तों को हम प्ले करके सुनाते हैं जनाब अहमद मोगल का, रात जा तारा चवन था तू नहीं दे। तो बिल्कुल जनाब, मां त ईंदुमि पर जंहिंजी ॻाल्हि थिए थी हिन गाने में, उहो हाल अचे या कोन अचे, तव्हां मूंखे कॉल करे सघो था। मुंहिंजो नंबर नोट डाउन कयो, ज़रूर 03000113488।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: 44 साल जो तजुर्बो, हजारे मरीज जो एतमाद, आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, हमे डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। 44 साल वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसा।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ,
2: मोर को दिल्ली राणा, मोर को दिल्ली,
1: आवाज की डोर से बंधा हुआ।
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा।

0: और दूर दराज इलाकों में भी हर बच्चों तक पोलियो से बचाव का पैगाम पहुंचाया जा रहा है। पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चे को बूस्टर डोज जरूर पिलवाएंगे, ये अहद कर लीजिए। महफूज बचपन, महफूज मुस्तकबिल, पोलियो के खिलाफ हर खुराक हमारी अहम है। तो जनाब, जहां जहां पर आप नहीं पहुंच पा रहे हमारी पोलियो टीमें, तो जनाब उनके मकामी लोग उनकी हेल्प करें। और दूर दराज और मुश्किल रसाई वाले इलाकों में भी कोई बच्चा पोलियो से बचाव से मुहिम इस बचाव मुहिम से महरूम ना रहे, ये हम सबका अज़्म होना चाहिए। क्योंकि जब हम पाकिस्तानी अज़्म कर लेते हैं तो यकीन जानिए हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जब पाकिस्तानी किसी बीमारी को खत्म करने का अज़्म ले लें तो फिर तो जनाब वो बीमारी खत्म होनी होती है। तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब आप अपने इलाके, मोहल्ले और शहर से इस बीमारी को खत्म करें, बच्चों से पोलियो की बीमारी को खत्म करें। हमें इससे स्टेप लेना होंगे, जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, हिम्मत लेनी होगी और कुछ इनिशिएटिव लेने होंगे अपने बच्चों के लिए, अपने कौम के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की है, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और तमाम पोलियो टीमों के साथ फ्रेंडली रहकर उनको वहां तक पहुंचाएं जहां तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो जहां तक बच्चे पोलियो के कतरे पीना चाहते हैं। तो जनाब अब लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है और अपने बच्चों को उन्होंने पोलियो के कतरे पिलाए या नहीं पिलाए, ये जरूर पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब, अलहमदुल्ला मुझा प्यारा जानी केर असां सभिनी सां गॾु फर्स्ट क्लास मुझा मिठा केर असां सभिनी सां गॾु
1: पंहिंजो भाउ अली खान सुमरो।
0: अली खान सुमरो साहब किथां पिया ॻाल्हायो, कहिड़े शहर मां?
1: लाड़काणो भाउ।
0: वाह वाह, लाड़काणे वारा त अॼु खटी विया
1: भाउ।
0: सफ़ा सफ़ा ईअं रहंदा कयो हमेशा।
1: अलाह अलाह ख़ुशि कंदी ॿार बि साईं।
0: अच्छा अदा, इहो त ॿुधायो त तव्हां पोलियो जा फुरला पियारिया आहिनि पंहिंजे ॿारनि खे लाड़काणा में?
1: जी भा,
0: पोलियो जा फुरला पियारींदा आहियो तव्हां ॿारनि खे लाड़काणे में?
1: हा भा, पियारींदा आहियूं, टीम ईंदी आहे।
0: हा माशाला माशाला, कोऑपरेट कंदा आहियो न हुननि सां?
1: इनशाला इनशाला, यकी भरपूर हुननि सां चवनि हूंदो
0: आहे,
1: न घुसाईंदा आहियूं।
0: बिल्कुल घुसाईंदा बि कोन कयो, ऐं पाड़े वारनि खे ॿुधाईंदा कयो त पोलियो तमामु घणी ख़तरनाक बीमारी आहे, पंहिंजे ॿारनि खे बि बचायो हुन खां।
1: न न इनशाला, सर पाड़े वारनि खे बि चवंदा आहियूं बाबा पंहिंजे बचड़नि खे प्यारियो, जा घिटीअ में ॾिसंदा आहियूं टीम ईंदी आहे हुननि खे बि वठी प्यारींदा आहियूं, बाबा पीओ बचड़ा
0: इनशाला। अच्छा अदा, इहो ॿुधायो मुंहिंजा प्यारा भाउ, नालो छा ॿुधायो? मां विसरी वियुमि।
1: अली खान सुमरो।
0: अली खान सुमरो, गानो कहिड़ो ॿुधणु चाहियो था?
1: जी वा,
0: गानो कहिड़ो ॿुधणु चाहियो था अॼु?
1: असांखे गानो भई
0: डायरेक्ट वेह दिल में ॿुधायां थो। इरफान अली थेबो जी फरमाइश बि हुई, तव्हां कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो?
1: तव्हां सभिनी टीम जे नाले
0: बस। थैंक यू,
1: सदके
0: वञा सदके वञा, इहा ॻाल्हि थी न?
1: ठीक
0: है, थैंक यू अदा अली सुमरो, थैंक यू ओके हाफिज़। जी जनाब, अली सुमरो के बाद हमारे साथ हैं मोहम्मद खान कुंभार, बेवफा जमाल कुंभार, मोहम्मद अली कुंभार, हाली पोटा स्टाफ लग जलूरी खां शो लाजवाब है। थैंक यू सो मच अदा, तुम्हारा तमाम घणो थैंक्स, तुम असो शो बुझो पाया जलूरी स्टॉप का। मोहम्मद खान कुंभार, बेवफा जमाल कुंभार, मोहम्मद अली कुंभार, हाली पोटा स्टाफ लग जलूरी खां शो लाजवाब, थैंक यू सो मच अदा। हाँ क्यों हाँ शो जी नेक्स्ट कॉल था वचूँ चाहूँ था। असलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब, केर असां सभिनी सां गॾु आहे, लॻे थो गरज ज़बरदस्त, माना मज़ो अचे थो प्रोग्राम में। थैंक यू यार, थैंक यू, मुझे एतिरी तारीफ़ न करियो त मां चेयर खां किरी न पवां। थैंक यू सो मच। तव्हां पाण मिठा आहियो, इन लाइ तव्हांखे हर शइ मिठी लॻंदी आहे, हर कंहिंजी आवाज़ मिठी लॻंदी आहे। इहो ॿुधायो, जेको हाणे मां गानो थो ॿुधायां न आदा जानी, इहो कहिड़ो अथव डायरेक्ट वे दिल में, जेको कॾहिं जो मूंखे हिक दोस्त फरमाइश कई आहे इरफान अली, उहा ॿुधाइण वारो आहे, त कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो? ॿुधाईंदा हलो कोई न कोई।

0: सचल की सरमस्त धरती।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
2: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
6: brought to you by
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो

नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जी सदारत ते टेक्निक जे इजलास दौरान सिंध जो लाहौर सियालकोट मोटरवे मनसूबे मंजूरी ते एतराज। पंजाब में नवा मोटरवे मनसूबा शुरू करण खां अॻु सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे ते कम शुरू करण जो मुतालबो। आपाशी वारे वज़ीर जाम खान शोरो चयो त सखर हैदराबाद मोटरवे सिंध जो पुराणो इंतिहाई अहम मनसूबो आहे। वाइदे ऐं केतिरा ई साल गुज़रण बाबति फंड्स खां पोइ भले कमु घुर्जे।

पीटीआई बानीअ खे अलशिफा अस्पताल बदिरां पिम्स मां तिबी मुआइनो कराइण बाद जेल मुंतकिल करण ते अपोज़िशन जो सख़्त रद अमल। अपोज़िशन लीडर महमूद ख़ान अचकज़ई जी सदारत हेठि मुख़ालिफ़ धुर जे अॻवाननि जी अहम गॾिजाणी। अॻवाननि गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त काल जेको कुझु थियो उन जो अंदाज़ो न हो। अदालत मेडिकल बोर्ड जोड़ण जो हुकुम ॾिनो हो, उन ते अमल न थियो आहे। टिनि सालनि खां अदालतुनि जा चकर लॻाए रहिया आहियूं पर इंसाफ़ न पियो मिले। हाणे इंसाफ़ लाइ अवामी अदालत में बि वेंदासीं।

पीटीआई बानीअ जो तिबी मुआइनो अलसां पर पिम्स अस्पताल में कयो वियो। वफ़ाक़ी वज़ीर अता ताड़ जो इतराफ़। अता ताड़ जो चवण हो त डॉक्टरनि पारां तिबी तौर सेहतमंद करार ॾियण खां पोइ पीटीआई बानीअ खे सुबुह 5 वॻे ॿीहर अडियाला जेल मुंतकिल कयो वियो। पिम्स में अलशिफ़ा अस्पताल जा डॉक्टर बि मौजूद। बानीअ जी भेण उज़मा ख़ान इलाज जे समूरनि मरहलनि दौरान मौजूद रही। पीटीआई कारकुननि जे करे जेका सूरतहाल रस्ते में ऐं अलशिफ़ा अस्पताल ॿाहिरां पैदा कई वई, उनखे नज़र में रखंदे पीटीआई बानी खे पिम्स अस्पताल आंदो वियो। पार्लियामानी में तारिक फज़ल चौधरी जो चवण हो त पीटीआई बानीअ जा ज़रूरी तिबी मरहला मुकमल थी विया आहिनि, सिहत जे मामले ते सियासत न कई वञे।

0: कसम खणी चवां थो त पीटीआई बानीअ जी सिहत बिल्कुलु ठीकु आहे। पीटीआई भेण जी मुलाक़ात थी ऐं ॿुधाए सघे थी त बानीअ जी सिहत कीअं आहे। सिहत जे मामले खे सियासत जे वर चाढ़ण न घुर्जे। बचाव वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ़
1: भाई के बगैर
2: क्रिंज करोगे।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
5: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नुनारहन। त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻरायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
6: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: हाँ मुझे रांझण भाई वा केड़ा हाल चाल
3: आइन शुक्र है तमा बुधायो
2: फर्स्ट क्लास मुझे प्यारा रांझण भाई यो बुधायो छा कयो था आजकल
3: साईं आऊं खाली चौकीदारी कंदो आ बैठो आ बियो नालो छायो पंज गुजारत जो जवाब आए ओ गुजारत गुजारत मतलब
2: हां गुजारत बिल्कुल मैं सवाल तमा का कयो तो वो केड़ी शय आ जेका वो केड़ी शय आ जेका भजन दी आए तो आवाज नहीं दिया
3: साईं वो गुजारत
2: वा गुजारत आ
3: जी जी
2: ओके ॾिसूं था त तव्हांजो सवाल जो जवाब ठीकु आहे या कोन आहे पर तव्हां इहो ॿुधायो त हाणे जी जी
3: मुंहिंजो दोस्त डॉक्टर लालचंद डॉक्टर फरहान
2: जी
3: ऐं नियाज़ जूने जो नज़र जूने जो अली जूने जो इमरान बख्श जूने जो जानी जूने जो
2: वाह वाह
3: डॉक्टर फरहान
2: जबरदस्त जबरदस्त थैंक यू रांझण भाउ पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो तमामु दोस्तनि खे असांजो सलाम ॾिजो जी जनाब हमारे साथ रांझण भाई और रांझण भाई बहुत अर्से बाद हमारे साथ शो में आए थे इलाही टाइम का रांझण भाई आया इन के भी शमन जो गानों बुधायूं था बिल्कुल जनाब हाँ वूं शो की एक भी कॉल चाहूँ पानी कॉल रखे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम प्यारा केर वाह वाह वाह वाह हुसैन बख सियाल साहब कड़ा हाल चाल है ठीक ठाक है संगत सब कि अलहमदिल्ला भारन की दुआओं संगत की दुआओं मुझे गड मौजूद है यो बुधायो सियाल भा था कम कार कमकार
3: हाँ बिल्कुल सही फरमायो एज अ फार्मर
2: अच्छा
3: हा बिल्कुल गोठाण वादी में गोठ में रहो बटे किलो जमीन जहा खास
2: कहत
3: कर उपाय करोटी कमाए कर
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तमाम माशाल्लाह तमाम साबरीन मानू आ शुक्रगुजार मानू आ हकलाल की मानी पान भी खाना बार भी खारा तो अज के दौर में अगर यहां मानू साबरीन भी हुए शुक्रगुजार भी हुए हकलाल जो भी खाइंदड़ हुए तो वह मानू तमाम घणो माशे के लिए कीमती सरमायो हों तुम असो कीमती सरमायो आ
3: बिल्कुल अलहमदिल्ला हमेशा करीम रब जा शुक्र अदा कंदा
2: आहियूं
3: जो अलाह खे सेहत ॾिनी आहे ऐं पंहिंजे हथनि सां हिन गर्मीअ जी मौसम में सर्दी में पंहिंजी महिनत करे पंहिंजे अकल जो ॾिसंदा आहे
2: बेशक बेशक बेशक अला तव्हांजो सुकून बरकरार रखे इन में वाधाई आणे ऐं तव्हांजे रिस्क में बरकत आणे तव्हां ई हमेशा ख़ुशि रहो ऐं असांखे ॿुधंदा रहो शमन जो गानो ॿुधाए थो कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो था
3: बिल्कुल सर उहो बिल्कुलु दसां थो पर मां हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां शेयर कयां त अलहमदिल्ला अॼु ॾाढो ख़ुशि आहियां प्रोग्राम में शामिल थियो
2: आहियां
3: असल मुंहिंजो वक़्तु नथो लॻे मुंहिंजी काल नथी लॻे
2: अच्छा पर अॼु तव्हांजी काल लॻी वई आहे असांखे बि तमामु घणी ख़ुशी थी आहे त अहिड़े ज़बरदस्त माण्हू सां असां ॻाल्हायूं था
3: बिल्कुल सर अलहमदिल्ला अॼु ख़ुशि आहियां अॼु जेको आहे बाक़ी जेके कलाक थोरा सिजी बचा ईअं मुंहिंजो ख़ुशी ऐं मां यकीन ॾियां तव्हांखे अॼु की राति ई मुंहिंजी छुटियुनि जी गुज़रंदी जे मां तव्हांजे प्रोग्राम में शामिल
2: थैंक यू सो मच
3: प्यारनि सां गॾु आहियां
2: थैंक यू मुंहिंजा जानी मुंहिंजा प्यारा तव्हांजी इहे मोहबत आहे तव्हांजो प्यार आहे त तव्हां असां सां ॻाल्हाईंदा आहियो असांजे शो में शिरकत कंदा आहियो ऐं वॾे गौर सां टाइम कढी करे असांखे ॿुधंदा आहियो
3: बिल्कुल सर अलहमदिल्ला ऐं इहो जेको शमन अली जो जेको सॉन्ग आहे न
2: जी जी जी मिठो पियो ॻाल्हायूं
3: जेको बि

0: अगर कोई इंसान ये सब कुछ कर रहा है, अपने घर वालों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, रिस्क हलाल कमा रहा है, तो वो वाकई हमारे लिए सरमाया हयात हैं और हमारे लिए, हमारी कौम के लिए एक हीरो हैं। तो हमारे हीरो हमारे साथ मौजूद थे, लेते हैं शो की एक और कॉल। आप देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन आ चुके हैं। जनाब कॉल में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई पर कोई गल नहीं है, लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
1: वालेकुम अस्सलाम सर।
0: जी जनाब, केड़ो प्यारो भाव मुसा घर मौजूद है।
1: इशफाक नियाज़ी साहब, सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर शहर रसलदार को नजीर अहमद जखरानी।
0: नजीर अहमद जखरानी बॉर्डर का मना सिंध पंजाब बॉर्डर
1: बलोचिस्तान शहर रसालदार को नज़ीर अहमद जखरानी
0: अला माशाला। नज़ीर साहब, केड़ा हाल चाल अव बुधायो ता वो केड़ी शय है जेका टुटी वने ता आवाज को नहीं दिया है।
1: वो सर साह जो डोरी
0: है। साह जो डोरी है, थी सके थी, थी सके थी, मे बी पॉसिबल। तमा यो बुधायो जखरानी भात है, तमा जे इलाके में मना वो सरहद में केड़ी हवा थी हले या गर्मी आया।
1: सर गर्मी है सर।
0: होए होए, भला होते छो गर्मी
1: को बाद पो वाला है तो सर।
0: हाँ छो भला होते छो ही आ तमना रातों थी
1: मौसम जो चक्कर।
0: सही सही सही सही, यो बता
1: उनको अलावा सैयद जाद चाचा।

0: 6:30 PM. This time check is brought to you by. It's 6:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में. डार्क स्पॉट ब्यूटी क्रीम.
2: सर वाल ही सवाल कंदा आयन त असन जरे आयन हुआ ही बार भी असामट

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: हम हिम्मत हारने वाले में से नहीं है। हिम्मत इसलिए हार जाते हैं बहुत से लोग कि उनको नाउम्मीदी जकड़ लेती है, उनको मायूसी जकड़ लेती है। किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जगह काम कर रहे हो, ना भी कर रहे हो ना, या उनको कोई मौका ही ना मिल रहा हो काम करने का, तो वो बेचारे नाउम्मीदी मायूसी में घिर जाते हैं और फिर वो क्या होता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जो लोग मजबूत असाब के मालिक होते हैं, जो लोग मजबूत इरादों के मालिक होते हैं, वो तो कभी भी नाउम्मीदी और मायूसी की नजर नहीं होते, ना वो डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन जो बेचारे थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव हार्डली सेंसिटिव मेंटली सेंसिटिव, तो वो चले जाते हैं। तो मैं लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए ना, जो किस्मत में होता है वो जरूर होके रहेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा मजबूत असाब अपने करने होंगे, क्योंकि जनाब ये जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है जितनी हमें फिल्मों में दिखाई जाती है, जितनी हमें टीवी पर दिखाई जाती है। ये जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, तो हमें इसको फेस करना होता है, हमें उतार चढ़ाव इसके बर्दाश्त करने होते हैं। तो दिल पे मत लें, दिमाग पे मत लें, जिंदगी में जो भी मसला आता है, मायूसी आती है, उसको दूर भगाएं। जो भी मसला आता है उसको दिमाग से सॉल्व करें और दिल से सॉल्व करें, तभी तो आप लोग कामयाब होंगे ना। अदरवाइज अगर हम मायूसी में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो ऐसे मसले बिल्कुल भी हल नहीं होते हैं और ऐसे चीजें जनाब हमें अंदर से खा जाती हैं और फिर हम किसी काम के नहीं रह जाते। तो अल्लाह ताला ने जब हमें जिंदगी दी है, एक ही जिंदगी है और उसको हमने इंजॉय करना है, तो फिर हम उसको मायूसी की नजर क्यों होने देते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें जिंदगी को रज के एंजॉय करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। बिल्कुल जनाब, जब हम खुश रहेंगे और लाइट लेंगे हर चीज को और समझदारी से लेंगे, तो हम यकीनी तौर पर हर मसले से निकल आएंगे, हर प्रॉब्लम से निकल आएंगे। तो जनाब खुश रहें, खुश रहने दें और इंजॉय करें। लेते हैं शुक्रिया एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओए आई थी कॉल फिर चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, अब मसला तकरीबन सॉल्व हो चुका है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है आपकी आवाज आई। कैसे हैं आप? ठीक हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह सर। सोना खान
1: मस्तोई साहब, केड़ा हाल चाल है? ठीक ठाक, मजे में। जैकबाबाद वाला खुश रहने अलहमदुल्ला। मुझा प्यारा भा सफ़ा खुश आइन, तवां के दुआओं दियन था आई, तवां भी हमेशा खुश रहो। यो बुधायो तां जे गोठ जो मौसम की आए, तवां की आयो?
2: मौसम में सर ठीक है, आसान सब ठीक लगा पे हमार जी सना सना घर ना है। अगले हफ्ते जो पता ना बड़ा खेल मजा के ऐसा मुझे ज्यादा खुश किया जो आगे सारे।
1: एग्जैक्टली जी तमा आयो
2: हर वीक आने का इंतजार हूं सर, ता आवाज मिल जा।
1: थैंक यू सो मच अदा तांजा या प्यारा प्यारा गाली बुधन लासा तांके इनवाइट कंदा तो तासा शो में अचो।

0: सभी दोस्त असा जिका भी असंक बुधंदड़ आज लिसनर्स आज तमाम घनी प्यार गाल मुझी तारीफ भी कहना इन लाइन खून बधी वो आए अनफॉर्चुनेटली सोना भाई उड़ गए फुर करके लेकिन कोई बात नहीं है जनाब उनका नेटवर्क शायद उनका साथ ना दे रहा हो या कुछ उनके फोन के साथ भी प्रॉब्लम चल रही हो सोना भाई मिस यू आप दोबारा जरूर कॉल करें अस्सलाम वालेकुम
1: मीरपुर खासका
0: मीरपुर खासका केड़े भा
1: अजीज सोलंगी
0: अजीज सोलंगी भा वे अरसे का पुआ आयो छो भला
1: बस यार
0: बिजी बिजी न रहंदा क्यों ना दिसो ना वरी अस तासा गलांदा सी ना
1: साई आवाज जो तो मेहरबानी करवा एटीएम से आयो वेठायो तमाम
0: और जबरदस्त प्रोग्राम में जबरदस्त कॉलर्स भी ताजा ना जी तवा तवा अस के मुई न दिखारे दायो वरी हचो
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह आवाज जो प्रोग्राम सब बुद्ध बात है
0: हां चाहे तो
1: फर्स्ट क्लास कंकार तमाम फर्स्ट क्लास

0: गुलाम मुस्तफ़ा घोटकी ॻाल्हायां।
1: गुलाम मुस्तफ़ा घोटकी, ख़ैर सां घोटकी वारा बि पहुता आहिनि।
0: जी साईं,
1: घोटकी वारा सभु कीअं आहिनि? खैर मज़े में आहिनि, ख़ैर में आहिनि?
0: ख़ैर लॻो पिया, सफ़ा अमुन।
1: ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सदा इहो ॿुधायो, छा कमु कार कयो था ऐं कमु कार कीअं थो हले तव्हांजो? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माना पोल्ट्री जो कमु आहे, फार्मी मुर्गियुनि जो?
0: जी साईं, जी।
1: त कीअं हले थो हिकु दाणो?
0: इहो हले, रेट माना हलंदो चढ़ंदो आहे, कंहिंमहिल 500 रुपया गोश्त हले थो, कंहिंमहिल 450।
1: अच्छा, जॾहिं कोई अफ़वाह छॾे ॾे थो त माना मुर्गियुनि में वायरस अची वियो आहे त पोइ सस्ती थी वेंदियूं, ईअं न?
0: हा
1: हा। अच्छा, अदा घोटकी वारा भाउ, मां गानो थो हलायां मुमताज़ मलाई जो, कंहिंजे नाले सां करणु चाहियो?
0: जेके ॿुधंदा सभिनी
1: सभिनी जे नाले। थैंक यू मुंहिंजा प्यारा भाउ, थैंक यू, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। जी जनाब, हम गाना भी प्ले करेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि एक और कॉल ले लें आपकी। चलें जनाब, गाने के बाद हम कॉल लेते हैं, शायद ऐसा कर लें, जैसे आपकी मर्जी। नहीं, ले लेते हैं कॉल। एक यार, क्या याद करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम।
2: भाई कॉल ड्रॉप हो गई थी।
1: हाँ, कॉल ड्रॉप हो गई थी। सोना भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपसे मैं आप कैसे हैं और आपकी तबीयत कैसी?
1: देख लें, आपकी किस्मत अच्छी है कि मैंने वो कॉल ना लेते लेते भी ले ली। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर। अच्छा, ये गाना जो मैंने प्ले किया, अब आप किसके नाम करना चाहेंगे?
2: हाँ सर, सबसे पहले ये नाम करूंगा जमालुद्दीन भाई को, सुन रहे शिकार पर।
1: हाँ, उनकी कॉल भी नहीं आई, बात है। जी जी।
2: और उसके बाद जो इन अलीसन भाई को डेडिकेट कर लेंगे, जवार बच्चन संभाली को डेडिकेट कर लेंगे, और आपको और आपकी पूरी टीम को डेडिकेट कर लेंगे सर। और कुछ जाती
1: मुखड़ा। अच्छा, आपका साइनिंग गाना है, ठीक है, इंशाल्लाह वो जरूर चलाने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे से भाई।
2: मैं आपका शो सुन रहा हूँ।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर। थैंक यू सो मच, कहते हैं जबरदस्त साथ रही है।

0: सचल की सर मस्त धरती।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
3: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज़ 91.6।

0: ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਪਾੜੇ ਵਾਰਾ ਸਭ ਕੀ ਹਨ? ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੁਧਾਇਓ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜੇਕਾ ਭਜਨ ਦੀ ਆਏ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਨ ਇੰਦੀ ਆਏ?
1: भजन आवाज नहीं।
0: पांजे हिसाब से पांजो आंसर दिनो आए मां जे को बुधायदम हुआ लास्ट में बुधायदम। अच्छा आयो बुधायम दाद भा, ता गानो बुधाया तो शहजाद राजो कें जे नाले ते करना चाहो?
1: दाता जा जे के गाना उनन देश मिला।
0: हां हां,
1: दाता जा दोस्तन के जिन नाला वरदा उनके रेड चेक कंदा।
0: जरूर जरूर जरूर,
1: पोता ने प्रोग्राम में एंट्री किया जारी गाला सन दोस्तन के याद करन भी
0: जरूर कियो दा।
1: हां तो जमार मोमन बचन छपानी आसन चारो जो नारे में तान बते पयो है उन का लवा रियाज मिशन या हस ब्लॉक को है जिथे जिथे आवाज वने तो है जिथे दोस्त के बुदन ता हालगा नालो न नालो नखा आदिन पर सबनी के सलाम।
0: सबनी के सलाम, वालेकुम अस्सलाम अदा। थैंक यू दादा, थैंक यू जी जनाब। अब हम आपको सवाल का जवाब देंगे, वो कौन सी चीज है जो कि टूट जाती है तो आवाज नहीं होती? अदा, वादा जब टूट जाता है तो आवाज नहीं होती। आपने अपने अपने हिसाब से सही आंसर दिए हैं, क्योंकि जितने लोगों ने आंसर दिए हैं तकरीबन वो चीजें भी टूट जाएं तो आवाज नहीं आती है। अशफाक चाहते हैं आपसे ज्यादा, सोना भाई की फरमाइश पर मैं गाना प्ले कर चुका हूँ।
2: कर गया ये दिल ले गया मेरी जान।
0: इस गाने को सुनिए, अशफाक नियाज़ी को दीजिएगा इजाजत, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिएगा, कभी किसी का दिल मत तोड़िएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल एंड अल्लाह के बान।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो आहे त बलोचिस्तान ऐं पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल हिकु ऐं हमेशह लाइ गॾु आहे। फितना ख़्वारिज ऐं फितना हिंदुस्तान दुश्मन अंसरनि जूं प्रॉक्सीज़ आहिनि, जेके रियासत ऐं अवाम विच में विछोटियूं पैदा करण लाइ इस्तेमाल थी रहियूं आहिनि। दुश्मन जूं समूरियूं साज़िशूं क़ौम जी गॾियल अज़म ऐं रियासत जी मज़बूत ऐं फैसलाइती रद अमल सां नाकाम बणाईंदासीं। ISPR मूजिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां बलोचिस्तान जे अहम शख्सियतुनि ऐं सियासी क़यादत GHQ में मुलाक़ात कई। मुलाक़ात दौरान बलोचिस्तान जे अमन अमान इस्तेहकाम ऐं तरक़ीअ में नौजवाननि जे किरदार समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। फील्ड मार्शल चयो त बलोचिस्तान में नौजवाननि लाइ सलाहियतुनि ऐं मौक़नि जी का बि खोट नाहे। बलोचिस्तान जो अवामी बलोचिस्तान जी तक़दीर बदिलाए सघे थो।

पीटीआई बानी के अलशफा अस्पताल मुंतकिल करण बदरा पिम्स में तिबी मुआइनो कराए बीहर अडियाला जेल मुंतकिल करण से हुकूमत खिलाफ तोहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल करण जो ऐलान। पीटीआई रोडन रस्तन से एहतजाज करण से गड कौमी असेंबली तां इस्तीफा की भी धमकी दे छी। 27 सेप्टेम्बर से लॉन्ग मार्च वारो सड भी बरकरार। इस्लामाबाद में पीटीआई ए अपोजिशन के बिन जमातन की गडियल इजलास का मीडिया से गाले अगवान पीटीआई बानी के शफा अस्पताल मुंतकिल न कर हुकूमत अदालती फैसले से गड आईन ए कानून की भी तोहीन कई है। सुभाने तोहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कराई वी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर है हुकूमती अमल का को जवाब न तो ठे तो असान ऐवान में वेठल हूं। जडे अदालती हुकूमत अमल कर मुश्किल है तो जमहूरियत कि हल्दी। सलमान अकरम राजा हुकूमत शिफा अस्पताल बहर हजूम गड थो कूड़ो बयान उठाया। हाँ फैसलो अवाम के करणो है तो हि केस अदालत में विड़जे या रोडन से।

0: पीटीआई बानीअ जो तिबी मुआइनो अलशफा अस्पताल न पर पिम्स अस्पताल में कयो वियो। वफाकी वज़ीर अता तारड़ जो इतराफ़। अता तारड़ जो चवण हो त डॉक्टर पारां तिबी तौर सेहतमंद करार ॾियण खां पोइ पीटीआई बानीअ खे सुबुह 5 वॻे ॿीहर अडियाला जेल मुंतकिल कयो वियो। पिम्स में अलशफा अस्पताल जा डॉक्टर्स बि मौजूद हुआ। पीटीआई बानीअ जी भेण अज़मा ख़ान इलाज जे समूरनि मरहलनि दौरान मौजूद रही। पीटीआई कारकुननि जे करे जेका सूरत हाल रस्ते में ऐं अलशिफा अस्पताल ॿाहिरां पैदा कई वई उनखे नज़र में रखी पीटीआई बानीअ खे पिम्स अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। पार्लियामानी मामलनि वारे वज़ीर तारिक फज़ल चौधरीअ जो चवण हो त पीटीआई बानीअ जा ज़रूरी तिबी मरहला मुकमल थी विया। सिहत जे मामले ते सियासत न कई वञे। वफाकी हुकूमत पीटीआई बानीअ खे अस्पताल मुंतकिल करण वारे केस में ॿीहर नज़रसानीअ जी दरख़्वास्त दाख़िल करे छॾी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तरफ़ां रजिस्ट्रार ऑफिस जा एतिराज़ ख़तम करे नज़रसानीअ जी मुतफ़र कसम खणी चवां थो त पीटीआई बानीअ जी सिहत बिल्कुलु ठीकु आहे। पीटीआई बानीअ सां संदसि भेण जी मुलाक़ात थी चुकी आहे। उहा ई ॿुधाए सघे थी त बानीअ जी सिहत कीअं आहे। सिहत जे मामले खे सियासत जे वर चाढ़ण न घुर्जे। बचाव वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे चयो त पीटीआई बानीअ जी अख बहितर थी रही आहे। ब्लड प्रेशर जी शिकायत आहे, उन लाइ बि इलाज जारी आहे। डॉक्टर्स जी रिपोर्ट अवां बि ॾिसी वठो, असां बि ॾिसंदासीं। अॼु बि नवाज़ शरीफ़ जे प्लेटलेट्स जी ॻाल्हि करे मज़ाक उॾायो वेंदो आहे। पीटीआई बानी बि मज़ाक उॾायो हो, जंहिं जूं केतिरियूं ई वीडियोज़ मौजूद आहिनि। हुननि खे अहसास न हो त बीमारी हिकु हक़ीक़त आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे असांजो पाल।
4: सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: It's 7:15 PM.
2: This time check is beauty cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्प

0: It's 7:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं, पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि. उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान. तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे. कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो. रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे. तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए.
3: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
4: फादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान.
3: GAFM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज.

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी जाधा मियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।

0: नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे. इन जो जवाब बिल्कुलु आसान आहे. इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था. अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो. पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 की आवाज़.

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो। अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

मेरे बाप ने अपनी पहली बेटी का फर्ज निभाने के लिए इनसे कर्जा ले लिया था, जिसके बदले में मेरा रिश्ता करके इनसे सौदा किया गया।

0: तेरा है ज़हन नसी
1: से कितनी मोहब्बत करते
2: बे इंतहा।
1: ये गौहर के बारे में क्यों सोच रहे थे?
3: ये लड़की ज़ोया कब से तुम्हारे हवासों पे छा गई है?
4: She makes me happy. जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं अपने आप को एक जिंदा इंसान महसूस करता हूँ।
5: तुम मर्दों के पास बाहर एक यही एक्सक्यूज क्यों होता है?
6: मैं तुम्हारा नहीं, सिर्फ हालात का मुजरिम हूँ।
1: तुम्हारा नाम क्या है?
7: समीर।
2: समीर।

0: गर्दन के मारियो वियो। मारिजी वियल दहशतगर्दन वटां हथियार, AIDs ऐं मोटरसाइकिलूं बेहत करण जी दावा।
1: कानून ईन को छोड़ दे, एक आम कैदी की तरह आप उसको राइट नहीं देते। मैं ये नहीं बनता कि आपके वजीद में
2: कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट से बाहर आएं, कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम मजीद ना रहें। सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे अब भारी जिम्मेदारी आए दो
3: तो हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की क्योंकि
4: पोएट्री इट इज अराउंड अस, द पोएट्री ऑफ क्लैरिटी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: होती है सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: असां के पोलियो जा खतरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो अहमद आहे। अल्लाह ताला जी सिहत लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। पोलियो जो वायरस पोलियो बूस्टर ते मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि उन्हनि खे ही बूस्टर जी
3: तहज़ीब ऐं सक़ाफ़त से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फ़ज़ाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज़।
3: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: It's 8:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GAFM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: स्ट्रेंथ के हो तो आवाज भी स्ट्रेंथ की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। इट्स 8:30 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। इट्स 8:30 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز سیدھا ہوا.
1: جی ایف ایم.

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहती थी। यही सजा है अमन को छोड़ने की।
1: मुझे लगता है तुमसे शादी करके कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने। मेरी बेबसी और लाचारी की वजह से तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है।

0: मुझे अपनी जितनी सफाई देनी थी ना मैं दे चुकी हूँ। अब अपना सर काट के मैं उनके कदमों में नहीं रखती।
1: तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए।
2: जो रिश्ते सुख देने के बजाय दुख देने लगे उनका टूट जाना ही बेहतर है।

0: नहीं जिसमें डॉक्टर फैसल ने डॉक्टर उस्मान ने शामिल होना। दूसरी बात यह थी कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के गेट की हुजूम न खड़ा हो, बिल्कुल कोई हुजूम खड़ा नहीं हुआ। एक झूठा बयानिया बनाया गया है।
1: कल यकीनन हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो इन्हें अदालत की दरखास्त दाखिल करेंगे। पाकिस्तानी कौम को यह फैसला करना होगा कि यह मुकदमा कहां लड़ना है, अदालतों में लड़ना है या सड़कों पर लड़ना है।
2: पीटीआई बानी के अलशफा अस्पताल मुंतकिल करण बदरा पिम्स में तिबी मुआइनो कराण बीहर अडियाला जेल मुंतकिल करण से हुकूमत खिलाफ तो इन अदालत की दरख्वास्त दाखिल करण जो ऐलान। पीटीआई रोडन रस्तन से एहतजाज करण से गड कौमी असेंबली तां इस्तीफाउन की भी धमकी दई छदी। 27 सेप्टेम्बर से लॉन्ग मार्च वारो सद भी बरकरार। इस्लामाबाद में पीटीआई अपोजिशन के बेन जमायतन की गडियल इजलास का मीडिया से गालंदे अगवान तो पीटीआई बानी के शिफा अस्पताल मुंतकिल न कर हुकूमत अदालती फैसले से गड आईन ए कानून की भी तोहन कई है। सुबाने तोहन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कराई वेंदी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर हुकूमती अमल का पोए को जवाज न तो ठहे तो असा इन ऐवान में वेठल हुजूं। जैसे अदालती हुकूमत अमल करण मुश्किल है तो जमहूरियत कि हलंदी। सलमान अकरम राजा हुकूमत शिफा अस्पताल बारा हुजूम गड थो कूड़ो बयानियों ठाको। हाँ फैसलो अवाम के करणो है तो हि केस अदालत में विड़जे या रोडन। सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो रिकॉर्ड से मौजूद वाज़ह कानूनी गलतियों से बदल है। पीटीआई बानी के खानगी अस्पताल मुंतकिल कर पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के खिलाफ है। जेल कानून में कैदी के खानगी अस्पताल में दाखिल करण जो को भी तस्वुर ना है। अड़े फैसले से बया कैदी भी अड़े ही नोयत जहा मुतालबा कर शुरू कर छींदा। हुकूमत पीटीआई बानी की अस्पताल मुंतकिली वाले फैसले खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त बीहर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराई छी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद पारा रजिस्ट्रार ऑफिस जै एतराज खत्म कर दाखिल कर नजरसानी दरख्वास्त में चयो है तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कैदी की हालत गणती जोगी होजन जो को भी जिक्र न हो। अदालत के मायर की राय वठण का सवाय सीधी रीत फैसलो न डेण घुर्जे। हा कैदी के हफ्ते में बेरा गैर मुल्की टेलीफोन कॉल की इजाजत डेण भी रूल्स खिलाफ है। अदालती फैसले से नजरसानी करें।

0: बात जरूर कहूंगा कि इमरान खान साहब की हमशीरा की उनके साथ मुलाकात, वो बता सकती हैं कि उनकी सेहत का जो है क्या हालात है।
1: लेकिन मैं आपको बिल्कुल हल्फन कहता हूं कि उनको सेहत को कोई मसला नहीं है, आंख का मसला था, अल्लाह के फजल से वो सेहत याब हो चुके।
2: कसम खड़ी चवान तो पीटीआई बानी की सेहत बिल्कुल ठीक कम लिखे सियासत के वाले चाड़न न घुर्ज। दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ जो कौमी असेंबली में खिताब। ख्वाजा आसिफ चो तो पीटीआई बानी की अख बेहतर थी रही है, ब्लड प्रेशर की शिकायत आयो जैं कैदूद आन उन्हें हाँ एहसास थो हों।

0: पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल हिक ऐं हमेशह लाइ गॾु आहे। फितना ख़्वारिज ऐं फितना हिंदुस्तान दुश्मन अंसरनि जूं प्रॉक्सीज़ आहिनि, जेके रियासत अवाम विच में विछोटियूं पैदा करण लाइ इस्तेमाल थी रहियूं आहिनि। दुश्मन जूं समूरियूं साज़िशूं क़ौम जी गॾियल अज़म ऐं रियासत जी मज़बूत ऐं फैसलाइती रद अमल सां नाकाम बणाईंदासीं। ISPR मूजिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सां बलोचिस्तान जे अहम शख़्सियतुनि ऐं सियासी क़यादत GHQ में मुलाक़ात कई। बलोचिस्तान जे अमुन अमान इस्तेहकाम ऐं तरक़ीअ में नौजवाननि जी किरदार समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो त बलोचिस्तान में नौजवाननि लाइ सलाहियतुनि ऐं मौक़नि जी का बि खोट न आहे। बलोचिस्तान जो अवामी बलोचिस्तान जी तकदीर बदिलाए सघे थो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेट।
2: मटियारी क्यारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सोच लॻाए।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आप।

0: ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुजा मस्त मलंग ही मारू डुगर था भी दादा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों तो असा बार बार पैं बार पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असा बार पैर पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमान उलालायल है। मां बार शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो का कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जहा बेहतर थे थी। हाँ जो कैंपेन अचे थी जैमें असो पोलियो जो डींदी उनमें का भी सुई इस्तेमाल न थी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जहां बार के करा तो जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुजी मर्ज में

0: सारे दिन पीर की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीम रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।